0: हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
1: Well, moving on to some breaking news now coming in from Mumbai. An 8-year-old boy was killed after being hit by a Innova car. This was in Bandra and the woman driver has now been arrested. The driver has been identified as one Meghna Rawal, a gym trainer by profession. The incident took place around 3:30, between 3:30 and 4 p.m. And according to the complaint, the accused was driving at high speed while talking on her mobile phone, and she therefore endangered human life. The vehicle hit the child, Ansh Gupta, while he was crossing the road and then ran over him. He was rushed to hospital where the doctors declared him brought dead.
2: न्याय चाहिए और क्या चाहिए सर, मुझे मेरा बच्चे का न्याय चाहिए सर।
3: मेरा
2: बच्चा कसूर रोड पर नहीं है सर, मेरा बच्चा साइड चल रहा था सर, मेरा बच्चे को उसने कैसे मार के उड़ा दिया,
4: वो से जा रहा था जानबूझ के गई, उसको इतना नहीं अक्ल था कि मेरे टायर के नीचे लड़का आ गया तो उसको उतार को देखना तो चाहिए, उठाना भी तो चाहिए, उसके पास इंसानियत नाम का चीज ही नहीं था।
3: बाहर लाओ, जैसे मेरा लड़का गए साथ में उसको भी दोनों के साथ में लेके जाओ, तब मेरे को न्याय मिलेगा, दोनों के साथ में लेके जाओ।
4: मिलाओ उसका
5: चेहरा, मिलाओ। हम लोग वहाँ पे मैच खेल रहे थे, ऐसे स्टैंड हो गया, हम लोग देख रहे थे, मैडम फोन से फोन बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे, उनका ध्यान तो गया ही नहीं उधर। हम लोग जब रुका रहे तो फिर भी क्या बोलते एक दोनों टायर चढ़ चुके थे लेफ्ट साइड का, फिर भी हम लोग रुकाए, रुक नहीं रहे थे, आगे दो तीन बंदे रुके तो हम लोग रुकाए, उनके ही गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल में लेके आया, और फिर भी हम लोग आए, फिर भी तो दो तीन एक डेढ़ घंटे तक हम लोग को फोटो ना पहचान का कोई अंदर जाने नहीं दिया। वो लोग ने चौकी फ़ोन किया तो चौकी वाले आए, तो चौकी के पुलिस वाले ने फोटो दिया तो हम लोग भेजे वहाँ पे अपने एरिया में, तो मालूम चला कि हाँ अपने एरिया का है।
1: Let's go across to Abhishek Awasthi for more. And Abhishek, give us more details. And this woman, left that child on the road after running him over?
6: Definitely. And but now she has been arrested. And more importantly, culpable homicide amounting to murder charge has been leveled on her. And she has been in the custody and further investigation is going on. Definitely, we can understand that the parents are demanding justice, and this happening on a Bandra road and clear-cut reckless driving, and also the eyewitness making a point out there that she was on the call when she was driving, and an 8-year-old has lost his life. Definitely further investigation by Mumbai police is going on, and she's also been arrested. A strict action should be taken in this entire incident.
1: All right, thanks so much Abhishek for joining us with those details. In other news now, Congress leader and Minister S. Rajesh Kumar from Tamil Nadu has now hit out over the TVK projecting Vijay as a prime ministerial candidate. TVK ministers are projecting Tamil Nadu Chief Minister Vijay as the next prime minister. Our leader Rahul Gandhi, he says, is the Congress party's prime ministerial candidate for 2029. And then he goes on to say that if TVK does not agree to this, then Congress will not continue in the cabinet.
7: அமைச்சர்களெல்லாம் அவர்கள் பேசும்போது எங்களுடைய முதல்வர் அடுத்த பிரதமர்லாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஊடகவியல் நண்பர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் என்னிடம் ஒரு அமைச்சர் என்கின்ற முறையில் கேட்கும்போது நான் மிக தெளிவாக சொல்லியுள்ளேன், எங்களுடைய தலைவர் வருகின்ற 2029 நடைபெறுகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அடுத்த பிரதமராக வருவார்கள். ஒருவேளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதற்கு உடன்படாவிட்டால் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய இரண்டு அமைச்சர்களும் இந்த பதவியில் நீடிக்க மாட்டார்கள்.
1: Let's go across to Vijay.

0: अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज फोन कीजिए। मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ, मुझे पता है मेरी मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग।
1: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
2: अपना ही भाई है उसका, तो
1: ये भी मिसिंग है। आपने आर्मी से बात की?
2: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे।
1: हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट हैव बीन पुट अप हियर ऑफ दोज हु हैव बीन मिसिंग, समवन और द अदर हैज कम हियर एंड पुट अप फोटोग्राफ।
3: As you see, viewers, the flood disaster has left behind scenes of devastation and desperation as well. Meanwhile, in Devighat, one of the worst hit areas along the Truli River, residents who fled for their lives, they're now returning to search through the wreckage of their own homes. Floodwaters rose several stories high, sweeping away entire homes and leaving an unknown number of people dead or missing. As the river began rising again, panic returned to the village, forcing residents to flee once more. Here's the report.

0: The dead body of one of the victims of the devastating Nepal floods being brought to a central point in Devighat, a small village on the banks of the Trishuli River. This is among the worst hit areas. Flood waters rose three stories high. No one still knows how many were killed here, trapped in their homes, or how many were carried away by the rampaging river. This mother of three children escaped with her life. Her children also made it. She's back with her husband to recover whatever she can from what was her home.
1: अब कहाँ जाएंगे?
2: अब कहाँ जाने
3: चाहते हैं? हमी अब जान तो कहाँ जाने अब कहाँ के ही थोड़ी ना?
4: जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ घर नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है।
1: तो अब कहाँ रह रहे हैं? आप यहीं रह रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे रात को?
3: अब आई रहते हैं त्यां माथे हॉस्पिटल में छूं, आयुर्वेदी।
4: आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बैठ रहे अभी, यहाँ से निकल के।
1: और बाद में क्या होगा कोई आइडिया नहीं है?
4: कि आइडिया सरकार क्या बोलेंगे, सरकार कुछ ये पीड़ित लोग को कुछ राहत मिलेगा और घर बना के कहीं रख देंगे, वो तो मालूम नहीं है।
0: Suddenly there's panic everywhere. Women and children start running. Others get into their bikes and flee. The river, they shout out, is about to break its banks. We move to try and get an idea of what's happening.
1: क्या हुआ? पानी का स्तर बढ़ गया है? पानी बढ़ा है? पानी का स्तर बढ़ गया है?
5: हाँ, पानी का स्तर बहुत
6: ऊपर आ गया है।
5: क्या हुआ? आपने क्या देखा? हमने तो देखा।
6: नहीं, हम देखा है। इधर हाँ, हमारे इधर का आदमी है, इधर का स्थानीय है, इसलिए हम वो खोड़ा का बहुत चौड़ा है ना, पानी का सतह बहुत चौड़ा हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, इसलिए सब आदमी को हम बुलाया, चिचाया, कराया, चिल्लाया, लेकिन जल्दी जल्दी चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, इधर मरने का मुंह है, फिर मरेगा फिर।
0: Yes, the river is rising. It's higher than what I have seen.
1: It's going up, yeah? Hurry up. All right, we are at Devighat right now. This is the Trishuli, and the levels of the water over here in the last 15 to 20 minutes have really started going up. It's about 2 o'clock local time, at about 1:40 or so, the levels started really going up. We managed to get here and we are leaving this area right now. The level of this Trishuli, which is what we've been sort of monitoring ourselves because we've been deployed in this area for the last couple of days, is higher now than before. We're going to get out of this area. We're going to take you through some of the areas which have already been hit.
0: This narrow lane with homes and shops on either side is a disaster zone. Everything here is gone. Lives, homes, property. There's a stench all around us as we keep moving. A short distance away, I spot a woman sitting quietly and all alone. She sits in stunned silence. Her eyes tell us a story of loss, of quiet suffering.
1: आपका घर यहाँ है?
3: क्या तालो?
1: ये वाला?
3: ये लाइन में तालो पटी?
1: इस लाइन में है? और आपके सब लोग सब ठीक है?
3: नहीं, सब

0: river has widened. It's more fierce. The speed of the water is for you to see. This has also distracted the entire Betravati Bazaar of Rasua. We'll go towards that side too. This, it seems, was a restaurant for the tourists, for the locals who wanted to come and have some a good time. Here we can see how the silt has submerged the entire kitchen of this building. You can see the silt inside the kitchen. The utensils and every little thing there is submerged in mud. Locals have been advised to keep away from this area. We would also be moving away now because we can't really spend a lot of time here. This is to show you the scale of destruction and devastation which Rasua has seen. हम पहुंचे हैं इस वक्त दादुका जी के पास, जो उनका घर है यहाँ पर. ये बहुत करीब रहती थी बेतरावती बाजार के, और अब वो घर दिखाएंगी. अब ये घर छोड़कर जा चुकी हैं और यहाँ रहती नहीं है. हमें यहाँ लेकर आई हैं बेतरावती जी. दिखाइए घर में कुछ नुकसान हुआ क्या, कुछ परेशानी हुई जब सैलाब आया? कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब जिस दिन आया बाढ़? घर से गया नीचे गया. आपके घर में कुछ नहीं हुआ तो फिर आप डरे क्यों? आपने घर क्यों छोड़ दिया? हिलता है घर? दिखाइए कहाँ हिल रहा है. डर लग रहा है आपको? दरवाजा हिलता रहता है. बस्ती में कोई नहीं,
1: परिवार
0: मात्र. जिस दिन बाढ़ आया, सैलाब आया, आप यहाँ थे?
1: आप यहाँ थे.
0: ऊपर भागे?
1: भागे ताला ताला नीचे नीचे. अंतर तो गॉड और सब आएगा.
0: We are at the basic level school in Rasua. This school has actually become now a shelter home for children. Behind me are children. It's their lunchtime. They're having their food, and we've been told that around 100 children have been rescued from the flash floods. Some have lost their parents. Some parents are still missing. They're waiting to hear about them.
2: दुख की बात है, साथ में था वो दोस्त लोग, सब चला गया और वैसे हो रहा है, घबरा रहा है. कल क्या देखा था और कल क्या होगा वो भी पता नहीं, ऐसे पेट रहा हूँ.
0: घर बार सब कुछ तबाह हो चुका है.
2: परेशान वो भाई बहन के बहुत याद आता है. और मैं कितने वो 12 तारीख में फ्लाइट होना था मलेशिया में, वो सुपरमार्केट में, उसके लिए पैसे बगैर सब कुछ ऋण लेके रखा था, वो भी चला गया.
0: एनडीटीवी इज ब्रिंगिंग यू अनदर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फ्रॉम श्यापुर. वी हैव रीच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ नेपाल. बियॉन्ड दिस इज नेपाल चाइना बॉर्डर. राइट बिहाइंड मी इज श्यापुर. वी कैन जस्ट जूम इन एंड शो यू, दैट्स द श्यापुर मार्केट प्लेस विच वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी टिल 26th August. बियॉन्ड दैट इज तिमोर बाजार विच वॉज द लास्ट सेटलमेंट of Nepal, which has been now completely devastated. A massive avalanche and glacier collapse has destructed, devastated everything around this area. And these are the first pictures coming out from the border. The damage, the flood completely overwhelmed Timur Bazaar, burying houses, markets, vehicles. The rescue operations are still on, but these are the exclusive pictures. We are the only one who have managed to reach to the last point of Nepal where the destruction started. With camera person Pujaria, this is Sikta Deo for NDTV.
3: You must also know that the Nepal floods has left authorities facing the grim task of identifying hundreds of victims. In this NDTV ground report from Devghat Forest, you're about to see, actually from Chitwan district, Prabhakar Kumar reports on the mass graves being prepared for unclaimed and unidentified bodies. Around 200 bodies are lying in an overcrowded mortuary which has the capacity of just 50. Authorities there are photographing the bodies. They're collecting DNA samples before the burial, allowing relatives to identify their family members and enabling DNA matching later as well. My colleague Prabhakar also spoke to Ganesh Aryal, the district magistrate of Chitwan.

0: Listen in.
1: I'm right now inside the Deoghat forest of Chitwan district, and the reason why I'm here is that we all know the maximum number of bodies of people who died in this tragic incident of Nepal, the flash floods in Nepal, was fished from Chitwan. Now it has been 4 days already. The bodies are decomposing. It's giving foul smell. So now the local administration, the Nepal government, has decided to bury these bodies. So what they are doing is, you can see the Nepal police jawans out there. The graves are being dug over there. Nobody is allowed to actually go and shoot those graves. So we are refraining from going there. But you can see the Nepal police jawans over there. What they are doing is, they are clicking the pictures of those deformed bodies. They are also taking the DNA samples, and then they are waiting for the relatives to come and identify the bodies through picture. And once they identify the body, their DNA sample would be matched. Till then, these bodies would be buried here. So it's a mass grave area, you can see. If you talk about Chitwan, the total capacity of the keeping the body in the mortuary is 50, and they already have 200 plus bodies out here. So it's getting increasingly difficult for the administration or the government out here to manage to keep the bodies and wait for the relatives to come. So they have found out the solution: these mass graves in the Deoghat forest of Chitwan, where these bodies will be buried. यहाँ के CDO यानी कि जो जिला अधिकारी होते हैं उनके पास हम हैं, और ये चितवन जिला जो है, हालांकि यहाँ पे जो त्रासदी हुई है त्रिशूली नदी से, उससे अफेक्टेड नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो है वो चितवन जिले में ही मिला है। अभी भी लगभग 200 से ऊपर डेड बॉडीज़ है, और यहाँ हमने आपको दिखाया कि कैसे मास ग्रेव बना के लोगों को दफन किया जा रहा है, उनके DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है इसके मैनेजमेंट में, क्योंकि डेड बॉडीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में निकल रही है। जो त्रिशूली नदी है, जो यहाँ के नारायणी होती है, वो छिछली नदी है, और वहाँ पर डेड बॉडीज़ जो है नदी के किनारे पाया जा रहा है, जिसके चलते आप देखें कि आर्म्ड पुलिस फोर्स हो, नेपाल प्रहरी हो, या फिर नेपाल की सेना हो, इनकी अलग अलग टोलियाँ टुकड़ियाँ जो हैं वो डेड बॉडीज़ को फिश आउट करने में नदी से लगी हुई हैं। गणेश अर्याल साहब हैं, ये जिला अधिकारी हैं, जिसको यहाँ CDO बोलते हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक आप तो पिछले 4 दिनों से ये त्रासदी हुई है, आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या अभी तक डिफिकल्टी?
2: नहीं, उतना डिफिकल्टी तो नहीं है, लेकिन द सिचुएशन वाज नॉट यू नो प्रीवियसली अज्यूम्ड सिचुएशन। इट्स रियली अ ट्रेजिक एक्सीडेंट फॉर अस, सो वी आर ट्राइंग टू मैनेज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन फेसिंग हियर इज टू मैनेज द डेड बॉडीज।
1: आपके पास जो मॉर्चरी है, मुझे बताया गया कि उसमें 50 के आसपास की कैपेसिटी है, और अभी आपके पास लगभग और ऑलमोस्ट 200 के आसपास बॉडीज़ हैं, और बहुत सारी बॉडीज़ है वो क्लेम करने भी कोई नहीं आ पा रहा, पहचान भी नहीं।
2: हमारे पास अभी तक 264 डेड बॉडीज़ मिल गया है, उनमें से सिर्फ 10 लोगों का आइडेंटिफाई हो चुका है, और उन लोगों ने डेड बॉडी लेकर गया भी है। वो बाकी तो 254 है वो हमारे पास है, उसमें जो जब वो डेड बॉडी जो था वो डिकम्पोज होने लगा, इसीलिए हम लोग उसको टेम्परेरी बॉरियल सिस्टम से रख दिया है।
1: वो क्या है, व्हाट इज टेम्परेरी बॉरियल सिस्टम?
2: टेम्परेरी बॉरियल सिस्टम क्या है कि ये ICRC का स्टैंडर्ड है, हमारे नेपाल में भी उसका वो टेम्परेरी बॉरियल सिस्टम का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। उसका क्या है कि सबसे पहले वो डेड बॉडी जो हो, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, उसका सैंपल DNA सैंपल लेना पड़ेगा। हम लोग सैंपल उन लोग का DNA सैंपल भी ले चुका है, और वो सैंपल का जो कंटेनर वो लॉक नंबर है, वो नंबर से उसका डेड बॉडी का भी नंबर दिया जाएगा। इसी तरह उन लोग का टेम्पोरेरी बॉरियल सिस्टम में रख दिया जाएगा। अगर कोई आए कि हमारा वो तस्वीर से आइडेंटिफाई हो चुका है, ये मेरा आदमी है बोल के कोई रिलेटिव से आएगा, तो रिलेटिव से आने के बाद में सबसे पहले उन लोग को हम उसमें क्या है उसको DNA मैचिंग के लिए भेज देंगे। अगर DNA मैच हो जाएगा तो उन लोग का वो टेम्पोरेरी बॉरियल सिस्टम से उन लोग का डेड बॉडी निकाल के उन लोग दे देंगे।
1: और ये अभी कुछ देर पहले अलर्ट आया था कि फिर वाटर लेवल जो है फिर से बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि आपका जिला भी अफेक्टेड हो
2: ना? जो होना था वो तो सब हो गया, हम लोग का सब खत्म कर दिया। अभी जो आने वाला है वो जो अभी समाचार मिली है वो उतना डेंजर नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
0: All right, on that note, let's turn our attention now to a remark from the West Bengal Governor Arun Ravi on how India understands its own history and identity. We are given to understand that speaking about the post-independence period, Arun Ravi has accused successive rulers of making a concerted effort to ensure that Indians forgot their history and instead accepted the version narrated by the British as the absolute truth. R.N. Ravi has also made a broader assertion about the idea of India, saying that the country is not merely a political state, but a nation, and that this nation stands upon the foundation of Sanatan Dharma. These are R.N. Ravi's words. The emphasis here is on his formulation of Sanatan Dharma as the foundation of our nation. Listen in to his full remarks before we dive deeper.
3: आजादी के बाद के शासकों ने यह भरपूर प्रयास किया कि हमारे इतिहास को हम भूल जाएं और हमें जो अंग्रेजों ने जो इतिहास बताई उसी को प्रमाण मानकर हम आगे चलते रहे। उस कालखंड में जब हमारी संस्कृति और संस्कार को बदलने का पूरा प्रयास चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो शायद बहुत हद तक सफल भी हो जाए, ऐसा तो लगता है कि सफल हो गए।
0: Right, you've heard what the governor has to say. R.N. Ravi has accused successive rulers of making a concerted effort to ensure that Indians forgot their history and instead accepted the version narrated by the British as the absolute truth. He has also made a broader assertion about the idea of India, saying that the country is not merely a political state, but a nation, and that this nation stands upon the foundation of Sanatan Dharma. That's what R.N. Ravi has said. Let's go across to Hrithik Mondal, who joins us with further details. Hrithik, to begin with, take us to the context in which he made these remarks, and why does R.N. Ravi believe that Sanatan Dharma is the foundation to our nation?
4: Well, that's very important statement that is coming from Bengal Governor R.N. Ravi. Remember, he was speaking at an event yesterday in Kolkata, where he went on record and said that, yes, the post-independent rulers in India, they made efforts that we forgot our history, the real history. He also went on record and stated that India is not merely a state or political state, it is based on Sanatan Dharma. Now what we do understand that R.N. Ravi also spoke about the greatness of the Vande Mataram during yesterday's events. What we do understand that is a big statement when the newly elected government in Bengal, they are working in order to celebrate Vande Mataram widely, and what we do understand that this is perhaps for a very first time that R.N. Ravi, since he has become the governor of the state, is making such important comment with regard to the idea of the nation, and in which he went on record that it is best out on Sanatan Dharma. Though we are yet to get a reaction from the opposition parties, we will definitely try to connect and what they would say after such remarks that is coming from the governor of West Bengal. Back to you.
0: Of course, and we'll continue to track all the finer details and the political reactions that follow after R.N. Ravi's remarks. All right, on that note, let's turn our attention now to the political row over the alleged purification of the venue where Mallikarjun Kharge had addressed a rally in Haldwani, which continues to escalate. An FIR has now been registered against Rahul Gandhi after a complaint alleging that his remarks about the ritual hurt scheduled caste sentiments and wrongly gave a caste dimension to what the complainant describes as a cleanliness drive and religious ceremony. Now, this matters because the original political dispute was the Congress alleging that a venue was purified after Mallikarjun Kharge, a Dalit Congress president, addressed a rally there. Rahul Gandhi had called it an expression of untouchability, while Congress MP Priyanka Gandhi Vadra has strongly condemned the alleged purification ritual. In fact, she called it shameful and a grave violation of the Constitution, demanding an FIR and action against the SC-ST Act against those responsible. But the BJP, meanwhile, they're denying involvement and saying no BJP member participated in that ritual. The party has said that the matter will be inquired into, while accusing the Congress of trying to create controversy and politicizing the issue. We've got crucial political reactions you need to listen to.
5: First, humanity. A leader who was the president of the Indian National Congress. He is not Mallikarjun Kharge. This party has given democracy, freedom, constitution, and that all

0: is not an act of defiance. He added that the right to question is an essential expression of citizenship, of liberty and constitutional responsibility. He also said students cannot be threatened with punitive action for expressing a different point of view. These remarks come amid the ongoing student protest campaign by the Cockroach Janata Party. And as CJP leader Ashutosh Ranka has said, that the government cannot silence students and should listen to the genuine demands of students. In fact, Mr. Ranka has also warned that any intimidation could further intensify the student movement.
1: In a democracy, right to question is not an act of defiance. It is an essential expression of citizenship, liberty, and constitutional responsibility. So when students express a different point of view, when students ask questions, they cannot be threatened. They cannot be threatened with punitive action. That is unconstitutional. That is misuse of power and office.
2: देखिए आप अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जो है डराने धमकाने से हिंसा फैलाने से मारपीट करने से लोगों की आवाज़ को दबा सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जंतर मंतर से कुछ तो सरकारों को प्रशासन को इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना चाहिए। जेन्युइन इश्यूज़ हैं बच्चों के, IIT दिल्ली में भी जो हुआ बहुत ही जेन्युइन इश्यूज़ हैं। मैं तो खुद IIT से हूँ, मैंने देखा है किस तरह के इश्यूज़ आते हैं। अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चे प्रदर्शन करेंगे, उनका संवैधानिक अधिकार है और आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों की मांगों को सुने और उन्हें एड्रेस करें।
3: जस्टिस उज्जवल भी जैसे छात्रों का ही समर्थन कर रहे थे इस टाइम कि उन्होंने बोल रहे थे कि छात्रों को धमका नहीं सकते आप, उनकी बात सुननी चाहिए।
2: बिल्कुल सुननी चाहिए, सरकारों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप डराएंगे धमकाएंगे उससे बच्चे चुप हो जाएंगे तो आंदोलन को आप और बढ़ाएंगे। आप जंतर मंतर पर देखिए कि आपकी हरकतों से वो आंदोलन कितना बड़ा हो गया। आप अगर उसी तरह चीज़ें करते रहेंगे आपका दिमाग लोगों को डराने धमकाने में, आंदोलनों को खराब करने में, हिंसा फैलाने में रहेगा तो ये आंदोलन और बड़े होंगे।
0: As always, we continue to track the latest news and updates for you. We're slipping into a very quick break. Back in a moment.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर JK टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। ब्लेंडर स्प्राइट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर द वन एंड ओनली।
1: हेल्थ प्रॉब्लम्स डोंट ऑलवेज कम विद अ वार्निंग एंड व्हेन दे डू The concern for a family is often as much about the treatment cost as the illness itself. For teachers and school staff in Uttar Pradesh, that financial worry is now getting a safety net.
2: कैशलेस चिकित्सा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उपहार दिया है। 5 लाख तक की भी यदि राहत आदमी को मिल जाती है तो वो भी अपने आप में कोई छोटी रकम नहीं है।
1: Under the Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana, around 12 lakh teachers, Shiksha Mitra, instructors, cooks, School staff and their families are covered. This includes teaching and non-teaching staff of basic and secondary schools and Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. With up to 5 lakh rupees in cashless treatment at empaneled hospitals, beneficiaries can access care without worrying about upfront

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Kodiak.

0: बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के
1: तीन
0: मारोगे,
1: साल का बच्चा
0: और मैम
1: गलत
0: किसी भी
1: है और
0: फुटेज में मेरा
1: उसके
0: बच्चा
1: लिए
0: कहीं शैतानी
1: उन्होंने
0: करता भी
1: उसे
0: नहीं
1: मारा
0: है।
1: था।
0: उसके उसकी टीचर ठीक है और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको,
1: जी
0: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ़ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। वो अब ऐसा हो चुका है, इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1 2 3 ABCD भी बुलवाते ना तो अपने दोनों, अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पे लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे, वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है मैम।
2: Well, as always, the news and updates continue right here on the NDTV network. We're slipping into a very quick break. Back in a moment with the latest updates for you.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Act are supposed to provide these kind of details and look into such kind of incidents as and when they take place. But the school refused. First, they denied any kind of involvement. After that, they refused to provide the CCTV. And initially, after some conversation, they said that the family members need to pay 1500 rupees. NDTV spoke to the father of the victim here, who had gone on to say that the child is quite distressed and he refuses to go to school and also refuses to come out of his room and is scared of crowd, is what the situation of the child is right now. And this is quite concerning because this is not the first time that something like this has happened at a daycare. We had earlier seen that a similar case had come from Noida, where a child, 9-month-old child, was in fact bitten by the very people who are working at the daycare. In this case, we have seen that the police have launched an investigation. A case related to POXO has been registered against various people who are in fact inside the school. The nanny has been arrested and investigation is going on to ascertain further role of the school premises and also why was there such a big lapse, such a big security and all safety lapse that had in fact happened, and a 3-year-old child had to suffer this kind of assault at the hands of the very nanny. Over to you.
1: Thank you so much for getting us the latest there, Anushka. Meanwhile, my colleague Vedika, she spoke to the father of the 3-year-old this morning, just a few minutes ago. He says his son is living in a state of constant fear and is completely traumatized by this incident. Take a look.
2: I have the father of the 3-year-old victim live with me here on Breaking Ground. Sir, thank you so much for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले आज आपका बेटा कैसा है और इस इंसिडेंट के बाद उसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं?
3: हाँ जी मैम, अभी ना मैम मेरे बच्चे की इतनी गंदी कंडीशन ख़राब है, जब वो सो के उठता है ना सुबह मॉर्निंग में, तो मैम वो रोता है सबसे पहले, तो उसे ऐसा फील होता है कि अब मेरे को स्कूल में भेजेंगे, तो उसके आंसू नहीं रुकते मैम, और इतना गंदी कंडीशन है उसकी, जो स्वेलिंग है ना आँखों की और जो कान के उसके पर्दे सूज रहे हैं उनमें अभी भी इतनी गंदी कंडीशन है, वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, परेशान हो रहा है। अब पता नहीं मैम कब तक ये ट्रॉमा से, इस चीज़ से बाहर आएगा।
2: डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में?
3: मैम डॉक्टर ने ये बोला था कि, अब मैंने डॉक्टर को कल दोबारा दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके तो अभी कान के पर्दे अभी भी सूज रहे, इसकी तो स्वेलिंग ही नहीं जा रही, और मैम जो सीटी स्कैन करवा नहीं पा रहा क्योंकि बार बार इसको बेहोशी की दवाई देते हैं, ये जो मशीन में जो आवाज़ें होती है उसकी वजह से उठ जाता है, तो मैम इतना गंदा कंडीशन हो रखी है इसको ना, दर्द भी सहन नहीं हो रहा इस टाइम पर।
2: मुझे पता है इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू रीलिव व्हाट हैपेंड, लेकिन अगर आप हमें 18 अगस्त के बारे में कुछ बताएंगे, आपके बेटे के साथ क्या हुआ और डॉक्टर ने उसके कान के चोट के बारे में
3: मेरे बेटे के साथ ना
2: कहा था? जी बोलिए।
3: हाँ जी मैम, बेटे के साथ प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से हो रही थी, तो 18 तारीख को जब बेटा स्कूल से घर पे आया था ना मैम, तो मैम उसके वॉमिट हो गए घर पे, और जैसे उसके वॉमिट हुई उसको चक्कर आए, तो मैं उसको तुरंत पेडिक्ट वाले डॉक्टर के लेके भागा। पेडिक्ट वाले डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ENT वाले डॉक्टर के लेके जाओ, उसकी दोनों आँखों में स्वेलिंग आ रखी है। अब मैम इसको ENT वाले डॉक्टर के लेके भागा, तो ENT वाले डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप इसको एडमिट कर दीजिए कि ये सहन नहीं कर पाएगा। मैडम मैम डॉक्टर साहब हुआ क्या है, कह रहे कि इसके इतने पर्दे सूज रहे कान के कि ये बच्चा कैसे हैंडल कर रहा है। मैंने कहा सर ये डेली रोता है ना, ये बता पाता ढंग से, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको एडमिट कर दो 3 दिन के लिए। तो मैम मैंने एडमिट करा नहीं, CBC कराया, CT स्कैन इसने जब भी नहीं कराया, तो मैम फिर मैं इसको घर लेके आ गया। मैम 18 तारीख को जब हमने फुटेज निकाली 9:45 के आसपास से लेके 12:30 बजे तक मेरे बच्चे को उन्होंने बांध के रखा है एप्रन से, और मैम कंटिन्यू उसके कान खींच के उसकी पिटाई लगाई गई है।
2: 3 घंटे
3: उसमें मेरा बेटा जो एप्रन से बंधा हुआ है वो मैम लगभग 3 घंटे वो एप्रन से बंधा हुआ है। जब एप्रन से वो अपने आप को, हाथ तो उसके खोल रखे थे एप्रन से, पीछे उसको बांध रखा था, जब वो चल चल के कुर्सी से आगे आ रहा है चेयर से और मैम लड़फड़ा रहा है कि मुझे खोल दो, तो मैम आया आती है केयर टेकर वहाँ से, वो उसको मारती है गंदी तरीके से, फिर वो दोबारा भगता है कि वो फिर बोलता है किसी टीचर से कि मेरे को खोल दो, निकलास टीचर से, वो फिर उसको मार के साइड में बिठा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना एप्रन गलती से खोल लेता है, उसको फोल्ड करके रख देता है, उसे फिर फेंक के मारता है। थोड़ी देर में क्लास टीचर फिर आती है, उसको प्यार में उलझा के, फुटेज है मैम इसकी सब कुछ क्लियर, उसको फिर एप्रन से बांध देती है। वो मैम फिर कोशिश करता है भागने की कि मेरे को कोई खोल दो, कोई खोल दो। उसके बाद वो एप्रन से अकेला बंधा हुआ है और ना क्लास टीचर रूम में और ना आया रूम में, वो बहुत देर तक आगे स्टूल के पास तक वो गया है, टेबल के पास तक, उसके पास बहुत देर वो बेचारा कभी लात मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसके बाद पीछे से आया फिर से आती है, फिर उसको मारती है कंटिन्यू, और इतने गंदे तरीके से मारती है मैम, आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे उसके।
2: क्लास टीचर और स्टाफ और कौन था जो मार रहा था आपके बेटे को?
3: क्लास टीचर और स्टाफ, मैम जो मार रहे थे वो आयतीन की केयर टेकर और इनकी क्लास टीचर थी।
2: सर स्कूल का कहना है कि
3: उसके बाद मैंने 17 तारीख की फुटेज निकाली उसमें
2: कर दिया गया है और वो पुलिस जांच भी पूरी कर रही है, सहयोग कर रही है, पॉक्सो पे केस का FIR दर्ज हुआ है, लेकिन स्कूल ने क्या जिम्मेदारी ली है अभी तक? आपने जब CCTV फुटेज देखा था उसके बाद आपने कोई जिम्मेदारी ली अभी तक? उन्होंने क्या बोला था?
3: मैम आपको सारी चीजें बताता हूँ ना अभी, मैम जब 17 तारीख को मैंने फुटेज देखी ना अपने बेटे की, तो 17 को भी उसको गंदी तरह टॉर्चर करके मार रहे हैं, साइड में बिठा दिया, कभी लात से मारा है, लात से साइड फेंक दिया कुर्सी से, मतलब इतनी गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाई जा रही है। फिर हमने मैम, मेरी वाइफ ने, उनकी क्लास जो ऑनर थी इनकी संगीता बंसल, उनको फ़ोन करा गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के मारोगे,
2: साल का बच्चा गलत है, किसी भी फुटेज में मेरा बच्चा नहीं, शैतानी उन्होंने उसे मारा था।
3: उसके उसकी टीचर ठीक है और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको
2: जी,
3: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। वो अब ऐसा हो चुका है, इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1, 2, 3 ABCD भी बुलवाते हैं ना, तो अपने दोनों अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पे लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे। वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है मैम।
1: Shifting focus, viewers, an 8-year-old boy, Ansh, was crushed to death after a speeding innova allegedly ran him over in Mumbai's Porsche Bandra area. Cops say the vehicle was being driven by a 44-year-old nutritionist, Megha Rawal, who was allegedly on her mobile phone at the time of the crash. Following the incident, Rawal was arrested and booked under culpable homicide charges. The victim's family, meanwhile, has demanded strict action, alleging negligence led to 8-year-old Ansh's death. The tragic accident has sparked outrage, and rightly so, with locals calling for tougher enforcement against reckless driving. Meanwhile, I'm joined by Ansh's parents, grieving parents, Ravindra Gupta and Poonam Gupta. कि सबसे पहले इस बेहद दुखद घड़ी में हमारी पूरी NDTV की पूरी टीम आपके और आपके परिवार के साथ खड़ी है। हम आपके प्यारे बेटे अंश के लिए तहे दिल से गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, मैं कुछ भी पूछूं उससे पहले ये है कि कल अंश का 9वां जन्मदिन होने वाला था, आप लोग इसे कैसे मनाने वाले थे और अब बिना अंश के कल का उस दिन का सामना आप कैसे करेंगे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कल अंश का 9वां जन्मदिन था, रविंदर जी, पूनम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
4: हाँ सर, आवाज़ आ रही है।
1: रविंदर जी, पहले तो मैं अपने तहे दिल से शोक व्यक्त करता हूँ, मैं और मेरी पूरी NDTV की टीम आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा रविंदर जी कि कल अंश का 9वां जन्मदिन मनने वाला था, आप लोग इसे कैसे मनाने वाले थे और अब बिना अंश के कि कल का दिन का सामना आप कैसे करेंगे?
4: कैसे हम करेंगे, बहुत बड़े दुख है उसको, मेरे बेटे को अन्याय चाहिए, अब मैं क्या करूँ, मेरे बेटे को अन्याय चाहिए।
1: रविंदर जी, आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला?
4: हाँ सर, मैं तो अपने धंधे पे गया था, 1 बजे मैं धंधे पे चला गया था सर, मेरे को मेरा बच्चा जो कि मैं धंधे पे गया था, मेरा बच्चा हुमा कर रहा था घर के अंदर बैठ के, और फिर मैं मेरे जो कि चाचा के लड़के जो कि करीबन 4 बजे के आसपास में आए तो बोले कि तुम्हारा बच्चा जो कि तबीयत ख़राब है, जल्दी चलो हॉस्पिटल में, होली फैमिली में। मैं होली फैमिली के पास गया तो मेरे बच्चे को लोग बोलता है कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, और कुछ लोग स्टैंड हो गया था और लोग बाकी बोलो तक तुम्हारे बच्चे तो साइड में खड़ा था, हमारे बच्चे कोई गलती नहीं है, वो लेडीज जो कि गाड़ी जो कि लेके आके ठोक दिया बच्चे को, बच्चा एक बार गिरा फिर वापस खड़ा हुआ, फिर वापस उसने गाड़ी चलाई, वो मोबाइल से बात कर रही थी मैडम जो चला रही थी गाड़ी। और मैं यही चाहूँगा कि सरकार से कि मेरा जो कि अन्याय हमको मिले।

0: चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल मेरा लाल का बर्थडे है, कल मेरा लाल का बर्थडे, मेरा कुन्याल चाहिए, मेरे को न्याल चाहिए। मेरा एक ही लाल था, मेरे को एक ही लाल था रे भगवान दौर दहियो बजे तो के कहले होती चनकेश कनिका जनमा में जात मार लाल बच गया होते हो
1: रविंद्र जी।
0: हम ना तो के भेजनी हो चनकेश
1: रविंद्र जी। अब आपकी कोर्ट और प्रशासन से क्या क्या मांग है इस त्रस्ती के बाद? मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा टूटे दिल की अवस्था में हैं अभी।
2: मेरा सर यही मांगा कि हाँ सर मेरा यही मांग है सर कि मेरा एक ही औलाद था और वो भी चला गया मेरा औलाद। अब मैं उसके लिए चाहता हूँ कि अन्याय मिले और जो किया उसको कड़ी कड़ी सजा मिले उसको, और सब सरकार से मेरी भी यही गुंजाइश है कि बच्चे के लिए मेरे अन्याय मिले,
3: इंसाफ चाहिए,
2: इंसाफ चाहिए मेरा मेरे बच्चे को और मेरे एक ही औलाद था।
1: बिल्कुल रविंद्र जी, एक मुझे आपसे सवाल और करना है रविंद्र जी कि ये जो घटना हुई, आपको इस घटना के बारे में इतला किसने करी और आपको क्या इतला हुई कि ड्राइवर ने गाड़ी अपने आप रोक ली या ड्राइवर का घिराव हुआ तब उसे गाड़ी रोकनी पड़ी? आपके सुनने में क्या आया रविंद्र जी? सबसे पहले
2: सर वहाँ पे जो पब्लिक लोग सर था वहाँ पे लोग देखा, वो पब्लिक लोग देखा बच्चे के जो कि इन्होंने एक बार की धक्का मारा तो बच्चा गिरा तो वापस खड़ा हुआ, फिर दोबारा उन्होंने बच्चे के ऊपर चढ़ाया गाड़ी तो गाड़ी चला करके भागने जा रहे थे और फ़ोन से बात भी कर रहे थे। पब्लिक लोग घेरा उसको, गाड़ी को घेर के उसको रोका, उसको फिर पुलिस के हवाले किया लोग।
1: गाड़ी भागने की कोशिश भगाने की कोशिश कर रहे थे ये आपने सुना सबसे पहले रविंद्र जी। उसके बाद अस्पताल में जब आप गए, क्या आप भी अंश के साथ उसी गाड़ी में अस्पताल गए थे या आप अलग से अस्पताल पहुंचे थे?
2: नहीं नहीं सर, मैं तो धंधे बताया, मेरे को बाद में खबर मेरे चाचा के लड़के ने आया मेरे को बताया कि तुम्हारा बच्चा जो कि तबीयत खराब है चलो वहाँ पे होली फैमिली में, तो मैं गया होली फैमिली में तो मेरे को पता चला कि एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। और बाकी लोग बताया कि ऐसे ऐसे लेडीज़ जो गाड़ी चला रहे थे, तुम्हारा बच्चा साइड में खड़ा था और जो कि वो फ़ोन से बात कर रहे थे लेडीज़ महिला, तुम्हारे बच्चे को जो कि एक बार धक्का मारे तो गिरा और बच्चे फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर दोबारा उसने गाड़ी चढ़ाई और चढ़ाई के भागने की कोशिश की तो सब लोग पकड़ के उसको रोक के उसको पुलिस के हवाले किया।
1: रविंद्र जी, आरोपी से आपकी कोई अभी बात हुई है जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से कोई भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है आरोपी से?
0: मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक मेरा कल लाल का बर्थडे था, कल बर्थडे था मेरा लाल का, मेरा लाल का कल बर्थडे था, मेरी एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है, मेरा अब कोई नहीं, मेरे को न्याय चाहिए। उसको फांसी तो फांसी दो, उसको फांसी तो सजा दो, उसको फांसी का सजा दो, मेरी एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है। आई ओ माई, मेरा एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है, उसको फांसी की सजा दो, मेरा बस यही न्याय है, मेरा उसको फांसी का सजा दो बस।
1: पूरम जी, राजेंद्र जी, हम एक बार फिर आपके प्यारे बेटे अंश के लिए तहे दिल से गहरा शोक व्यक्त करते हैं एंड देन वी विल मेक श्योर दैट यू नो द पेरेंट्स गेट जस्टिस इन दिस केस एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ मिनट वर्थ ऑफ फोन कॉल कैन रिजल्ट इन। इट कैन रिजल्ट इन समवनस लाइफ गोइंग, इट कैन रिजल्ट इन अ हाउस बीइंग रेक्ट टोटली इन अ सेकेंड एंड फॉर व्हाट? फॉर अ फोन कॉल one could not stop the car and receive. Well, switching our focus now, a 16-year-old Dalit student in Tamil Nadu's Madurai, she's died by suicide. Now, this comes days after she was allegedly humiliated and subjected to a casted slur by the school's headmistress. The incident reportedly took place during the student's admission process when she and her mother were in the headmistress's room. Reportedly, student's mother with folded hands before the headmistress. The student reportedly asked her mother not to fold her hands. At this, the headmistress allegedly reacted by using a caste slur against the teenager. Cops have booked the headmistress under the SC/ST Act. And well, with that, it's time we step into a short break. My colleague gets you breaking ground on the other side.

0: missing registered or even contact them who have their names registered already. Sir, ye kon hai?
1: Ye hamka ekre saulo ko aadmi hai, bibi hai.
0: So,
1: India se.
2: It's been 5 days. I'm waiting here for my father and mother. They are my world. I'm skipping my school days. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए. भगवान से यही कृपा है. सभी को रिक्वेस्ट है, अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज़ फ़ोन कीजिए. मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ. मुझे पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे. ये लोग
0: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
3: अपना ही भाई है उसका.
0: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
3: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे.
0: हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट हैव बीन पुट अप हियर ऑफ दोज हु बीन मिसिंग. समवन और द अदर हैज कम हियर एंड पुट अप फोटोग्राफ.
4: टिल नाउ इट्स फिफ्थ डे, टुडे इज संडे एंड वी हैव रिसीव्ड 56 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल. And out of those, one patient we couldn't save him. Other people are recovering. Three patients are in the ICU, and we are still receiving patients. Yesterday evening, we received one small kid after she was rescued after 70 hours of the incident, and she was mud drowned and had multiple injuries. So, on top of that, the other thing is we have also received around 59. Deceased bodies, and out of those 8 bodies we could identify and manage accordingly.
0: The transport industry in the entire country of Nepal has been huge, running to a tune of around 1 lakh vehicles, which includes tankers, special vehicles, and even a lot of small and big vehicles that are utilized for ferrying essentials across the country. But even that has taken a major hit, with thousands of trucks and tankers stuck almost everywhere. To talk more on this, I have with me Harpal Singh, who's been into the business. And give us an idea, sir, कितनी बड़ी ये त्रासदी है और आप लोगों के लिए भी कितना नुकसान हुआ है?
5: अभी तो फिलहाल तो देखिए ऐसे है कि नुकसान की बात तो अभी करके कोई मतलब नहीं आ रहा. नुकसान तो बहुत ही है. ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए 1-2 साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है. तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे कि थोड़ा बता हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की, ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके. इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें.
0: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें और लोगों की बात करें,
5: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चले जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है. तो लेकिन अब देखिए 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियाँ जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड.
6: The Himalayas are clearly sending out a warning. The devastating glacier collapse in Nepal has once again put the spotlight on a growing mountain hazard, as rising temperatures and retreating glaciers make Himalayan terrain increasingly unstable. The Nepal disaster itself has not been conclusively linked to climate change. A UN-led study has identified 407 glacial lakes across the Hindu Kush Himalaya at risk of bursting, and the frequency of glacial lake outburst floods has increased nearly fivefold since the year 1950. There's more in this report.
7: The Himalayas are sending out a warning. The devastating glacier collapse in Nepal has once again put the spotlight on a growing mountain hazard, as rising temperatures and retreating glaciers make Himalayan terrain increasingly unstable. The Nepal disaster itself has not been conclusively linked to climate change. A UN-led study has identified 407 glacial lakes across the Hindu Kush Himalaya at risk of bursting. And the frequency of glacial lake outburst floods has increased nearly fivefold since the 1950s. With the recent disaster in Nepal raising fresh concerns, Sikkim too is on alert. As glaciers retreat, meltwater accumulates to form glacial lakes. These natural reservoirs can burst after an earthquake, landslide, avalanche.

0: or extreme rainfall, unleashing massive volumes of water downstream. This is called a glacial lake outburst flood, or GLOF. And scientists say these events are becoming increasingly frequent.
1: हमारे हिंदू कुश के जो ग्लेशियर्स हैं उनके फटने की जिसे हम ग्लॉफ कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट उसके जो चांसेस हैं वो पिछले 70-75 सालों में करीब 5 गुना हो गए हैं 407 ग्लेशियर लेक आइडेंटिफाई हुई हैं और अलग अलग देशों में उसका ब्यौरा है पाकिस्तान है इंडिया है चाइना है भूटान है हम सब लोगों को पता है कि कौन कौन सी लेक जो हैं वो खतरे के निशान से ज़्यादा मतलब उनमें चूंकि वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो खतरे किसी भी टाइम आउटफ्लो हो सकता है
0: द वार्निंग इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर सिक्किम द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज मैप्ड 85 ग्लेशियल लेक्स ऑफ दीज 17 आर हाईली वल्नरेबल एंड रिट्रीटिंग एंड 7 कुड पोटेंशियली बर्स्ट ड्यूरिंग अ मेजर अर्थक्वेक और क्लाउड बर्स्ट Authorities say sensors have been installed across glaciers and rivers to provide early warnings. And this is not a threat confined to one country. The Himalayas stretch across borders, while rivers and disasters can travel far beyond them. Bureau Report, NDTV.
2: We bring you an extremely unfortunate incident from the national capital. Let me just warn you that the visuals could be disturbing to some. A 3-year-old child has been assaulted at a play school in Northeast Delhi. The case came to light after the child complained of severe ear pain. A doctor reportedly found swollen eardrums, with the family alleging that the child had been beaten and his ears pulled. CCTV footage allegedly showed the child being tied to a chair and assaulted. The child's father claims the assault took place over 3 days, from the 16th to the 18th of August. He alleges the child was tied to a chair, hit on the stomach and beaten so badly that he continued to cry. The accused nanny has been arrested and the accused teacher has only been dismissed for now while the police investigate the role of the other accused. I spoke to the father of this 3-year-old this morning. He says his son is living in complete fear, completely traumatized by the incident. Here's that entire conversation. I have the father of the 3-year-old victim live with me here on Breaking Ground. Sir, thank you so much for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले आज आपका बेटा कैसा है और इस इंसिडेंट के बाद उसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं?
3: हाँ जी मैम, अभी ना मैम मेरे बच्चे की इतनी गंदी कंडीशन ख़राब है, जब वो सो के उठता है ना सुबह मॉर्निंग में तो मैम वो रोता है सबसे पहले, तो उसे ऐसा फील होता है कि अब मेरे को स्कूल में भेजेंगे, तो उसके आंसू नहीं रुकते मैम, और इतना गंदी कंडीशन है उसकी, जो स्वेलिंग है ना आँखों की और जो कान के उसके पर्दे सूज रहे हैं उनमें अभी भी इतनी गंदी कंडीशन है, वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, परेशान हो रहा है। अब पता नहीं मैम कब तक ये ट्रॉमा से, इस चीज़ से बाहर आएगा।
2: डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में?
3: मैम डॉक्टर ने ये बोला था कि, अब मैंने डॉक्टर को कल दोबारा दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके तो अभी कान के पर्दे अभी भी सूज रहे, इसकी तो स्वेलिंग ही नहीं जा रही, और मैम जो सीटी स्कैन ये करवा नहीं पा रहा क्योंकि बार बार इसको बेहोशी की दवाई देते हैं, ये जो मशीन में जो आवाज़ें होती है उसकी वजह से उठ जाता है, तो मैम इतना गंदा कंडीशन हो रखी है, इसको ना दर्द भी सहन नहीं हो रहा इस टाइम पर।
2: मुझे पता है इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू रीलिव व्हाट हैपेंड, लेकिन अगर आप हमें 18 अगस्त के बारे में कुछ बताएंगे, आपके बेटे के साथ क्या हुआ और डॉक्टर ने उसके कान की चोट के बारे में क्या
3: मेरे बेटे के साथ ना
2: कहा था? जी बोलिए।
3: हाँ जी मैम, बेटे के साथ प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से हो रही थी, तो 18 तारीख को जब बेटा स्कूल से घर पे आया था ना मैम, तो मैम उसके वॉमिट हो गए घर पे, और जैसे ही उसके वॉमिट हुई उसको चक्कर आए तो मैं उसको तुरंत पेडिक्ट वाले डॉक्टर के लेके भागा। पेडिक्ट वाले डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ENT वाले डॉक्टर के लेके जाओ, उसकी दोनों आँखों में स्वेलिंग आ रखी है। अब मैम इसको ENT वाले डॉक्टर के लेके भागा तो ENT वाले डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप इसको एडमिट कर दीजिए, ये सहन नहीं कर पाएगा। मैडम मैम डॉक्टर साहब हुआ क्या है? कह रहे कि इसके इतने पर्दे सूज रहे हैं कान के कि ये बच्चा कैसे हैंडल कर रहा है। मैंने कहा सर ये डेली रोता है ना, ये बता पाता ढंग से, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको एडमिट कर दो 3 दिन के लिए। तो मैम मैंने एडमिट करा नहीं, CBC कराया, CT स्कैन इसने जब भी नहीं कराया, तो मैम फिर मैं इसको घर लेके आ गया। फिर जो मेरी वाइफ थी वो स्कूल गई तो उसने स्कूल वालों से पूछा कि आप मेरे बेटे के साथ मारपीट करते हो, तो उन्होंने बोला नहीं, जो ऑनर थी संगीता बंसल, जो इनकी प्रिंसिपल थी नीलम, इन्होंने बोला कि नहीं, हम बच्चों को मारते नहीं हैं, हम अपने बच्चों को ठीक से रखते हैं। तो मैंने बोला मैम एक बार आप CCTV दे दीजिए हमें एक्सेस, मेरी वाइफ ने बोला। तो उन्होंने बोला हम एक दो दिन में आपको एक्सेस दे देंगे इसका CCTV। तो मैम फिर एक दो दिन हमने CCTV नहीं लिया, बेटे की तबीयत ख़राब थी, फिर सैटरडे संडे आ गया बीच में। मैम जैसे ही मंडे हुआ, बेटा भी घर पर रेस्ट पे था मेरा, फिर मंडे भी नहीं गया बेटा स्कूल। ट्यूजडे को मैम जैसे ही बेटा स्कूल गया तो मेरी वाइफ पहुंची पीछे से, तो उन्होंने बोला मेरे को एक्सेस चाहिए इसका। तो उन्होंने पहले बहुत देर बहस करी कि ऐसे नहीं मिलता, ये है वो है।
4: जाता था या सुबह वो कुछ बोलता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है इस वारदात के बाद या पहले?
3: मैम वो रोता था मैम। जैसे ही स्कूल आता था ना, एक तो स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता था, वो घर के कपड़ों में जाता था। फिर उसे ऐसा लगता था स्कूल के कपड़े पहनाएंगे तो मेरे को स्कूल भेज देंगे। फिर मैम उसे घर के कपड़ों में भेज देते थे। फिर मैम जैसे ही मेरी वाइफ ने वहाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब उसने बोला कि नहीं मेरे को CCTV चाहिए, मुझे एक्सेस दो, मुझे अपने बेटे को देखना है, मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब उन्होंने हमें CCTV दिया, उसके उन्होंने 1500 रुपये चार्जेस करे हमसे।
4: किसने मांगा 1500?
3: उसके बाद हम घर आ गए तो 1:30 से 2 बजे करीब मैम प्रिंसिपल ने और ऑनर ने मांगे पैसे।
4: क्यों?
3: कह रहे 1500 रुपये चार्जेस है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1500 रुपये कोई। मैम उन्होंने बोला इसके चार्जेस है 1500 रुपये, एक्सेस लेने के, CCTV देखने के चार्जेस है हमारे यहाँ पे 1500 रुपये। फिर मैम मैंने उनसे, मेरी वाइफ ने बहस नहीं करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप दे दीजिए। फिर मैम हम घर पे आ गए, घर पे आकर उन्होंने 1:30-2 बजे हमें लॉग इन करा। फिर 26 तारीख को हमने सुबह जब CCTV ऑन करा, जब बेटा स्कूल गया था, तो मैम उसमें हमने 26 तारीख की फुटेज ना देख के लाइव, हमने 18 तारीख की फुटेज निकाली जिस दिन बेटे को वॉमिट हुई थी, उसकी आंखें सूज रही थी, कान के पर्दे फट रहे थे उसके, मतलब सूज रहे थे, मैम फटने वाले थे, डॉक्टर ने बोला उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। मैम 18 तारीख को जब हमने फुटेज निकाली 9:45 के आसपास से लेके 12:30 बजे तक मेरे बच्चे को उन्होंने बांध के रखा है एप्रन से, और मैम कंटिन्यू उसके कान खींच के उसकी पिटाई लगाई गई है। उसमें मेरा बेटा जो एप्रन से बंधा हुआ है वो मैम लगभग 3 घंटे वो एप्रन से बंधा हुआ है। जब एप्रन से वो अपने आप को, हाथ तो उसके खोल रखे थे एप्रन से, पीछे उसको बांध रखा था, जब वो चल चल के कुर्सी से आगे आ रहा है चेयर से, और मैम लड़फड़ा रहा है कि मुझे खोल दो, तो मैम आया आती है केयर टेकर वहाँ से, वो उसको मारती है गंदी तरीके से। फिर वो दोबारा भगता है कि वो फिर बोलता है किसी टीचर से कि मेरे को खोल दो, अपनी क्लास टीचर से, वो फिर उसको मार के साइड में बिठा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना एप्रन गलती से खोल लेता है, उसको फोल्ड करके रख देता है, उसे फिर फेंक के मारता है। थोड़ी देर में क्लास टीचर फिर आती है, उसको प्यार में उलझा के, फुटेज है मैम इसकी सब कुछ क्लियर, उसको फिर एप्रन से बांध देती है। वो मैम फिर कोशिश करता है भागने की कि मेरे को कोई खोल दो, कोई खोल दो। उसके बाद वो एप्रन से अकेला बंधा हुआ है, और ना क्लास टीचर रूम में और ना आया रूम में। वो बहुत देर तक आगे स्टूल के पास तक वो गया है, टेबल के पास तक, उसके पास बहुत देर वो बेचारा कभी लात मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। उसके बाद पीछे से आया, फिर से आती है, फिर उसको मारती है कंटिन्यू, और इतने गंदे तरीके से मारती है मैम, आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे उसके।
4: क्लास टीचर और स्टाफ, और कौन था जो मार रहा था आपके बेटे को?
3: क्लास टीचर और स्टाफ मैम जो मार रहे थे वो आया थी इनकी केयर टेकर और इनकी क्लास टीचर थी।
4: और जब आपने पहली बार वो CCTV
3: मैम फिर 17 तारीख को मैंने दोबारा,
4: आपके मन में क्या चल रहा था पहली बार जब आपने वो CCTV फुटेज देखा था एज अ पेरेंट?
3: सर मन में, हाँ जी मैम, पेरेंट्स क्या मैम, मैं तो इतना परेशान हो गया, हम पे तो फुटेज भी नहीं देखी गई, पर हमें जी को पक्का करके हमें आगे की फुटेज तक देखनी पड़ी, क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि हमारे बेटे के साथ कब से ये चीज़ें चल रही है और क्या हो रहा है।
4: सर स्कूल का कहना
3: है, उसके बाद मैंने 17 तारीख की फुटेज निकाली उसमें
4: कर दिया गया है, और वो पुलिस जांच भी पूरी कर रही है, सहयोग कर रही है, पॉक्सो पे केस का FIR दर्ज हुआ है, लेकिन स्कूल ने क्या जिम्मेदारी ली है अभी तक? आपने जब CCTV फुटेज देखा था उसके बाद आपने कोई जिम्मेदारी बात की थी, उन्होंने क्या बोला था?
3: मैम आपको सारी चीजें बताता हूँ ना अभी, क्यों मैम जब 17 तारीख को मैंने फुटेज देखी ना अपने बेटे की, तो 17 को भी उसको गंदी तरह टॉर्चर करके मार रहे हैं, साइड में बिठा दिया, कभी लात से मारा है, लात से साइड फेंक दिया कुर्सी से, मतलब इतनी गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाई जा रही है। फिर हमने मैम, मेरी वाइफ ने उनकी क्लास जो ऑनर थी इनकी संगीता बंसल, उनको फ़ोन करा गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के मारोगे।
4: साल का बच्चा गलत है और उसके लिए उन्होंने उसे मारा था।
3: उसके उसकी टीचर ठीक है और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। फिर उसके बाद मैम बहुत देर हो गई थी, हमने उनसे बातें करी, उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी, उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया शाम को। फिर 27 तारीख को मैम मॉर्निंग में हम स्कूल पहुँच गए, स्कूल पहुँच के भी उनका ऐसा बिहेवियर था, मैम मेरे पास फुटेज भी है उनकी, उन्होंने हमसे ठीक से बात तक नहीं करी, उन्हें कोई गिल्टी फील भी नहीं था, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि हमने मारा है, वो वीडियो देख के भी कह रहे हमने कुछ नहीं करा। और हमारा स्टाफ ऐसा नहीं है, आप पे जो होता हो आप कर लेना हमारे खिलाफ, ये कह के उन्होंने मेरे को वहाँ से भेज दिया। इनकी क्लास टीचर ने, क्लास टीचर ने नहीं सॉरी, इनकी प्रिंसिपल ने और ऑनर ने।
4: इसका ये मतलब है कि आप, आपका बेटा एक दिन मार नहीं खा रहा था, बहुत दिनों से मार खा रहा था, जैसे आप बोल रहे हैं ही वाज बीइंग असॉल्टेड।
3: मैम मैंने 18 तारीख 17 तारीख 16 तारीख की फुटेज निकाली थी
4: जी।
3: हाँ जी मैम 18 17 16 की मैंने जो फुटेज निकाली, उन तीनों दिन बेटे को डेली कंटिन्यू इतनी गंदी तरह टॉर्चर होकर मारा जा रहा था, बहुत गंदी तरीके से। जब मैंने 15 तारीख की और फुटेज निकालने की कोशिश करी तो 15 तारीख से इनकी फुटेज बंद हो गई, 15-14 की वो निकली नहीं मैम
4: जी।
3: तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैम ये तो कब से पिट रहा होगा, हमें भी नहीं पता कब से ट्रॉमा में है मेरा बच्चा।
4: बिल्कुल एब्सोल्युटली,
3: उन्होंने तो मेरे बच्चे को बेकार कर दिया।
4: आई एम सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑर्डियल सर, आखिरकार में एक ही सवाल है आपसे, आप
3: खींचना गंदी तरीके से
4: जी, आखिरकार में एक सवाल है आपके लिए, आपके हिसाब से आपके बेटे
3: मेरा बच्चा ना ऐसा हो चुका है जी। मैम बोली
4: जी, मैं पूछ रही हूँ आपके बेटे के साथ जो हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब जस्टिस आपके लिए क्या होगा?
3: मैम मैं आपको जी, मैम देखो क्लास टीचर्स और आया का तो पूरा पूरा आपको पता है मैम, कितने गंदे तरीके से मारा गया है बच्चे को। और मैम इसमें मैं गलती मैनेजमेंट की भी मानता हूँ, जब मैनेजमेंट के सामने CCTV फुटेज चलती रहती है कंटिन्यू, तुम उसको कंटिन्यू हमारे बच्चे को देख रहे हो और तुम्हें इतना सा भी फील नहीं हो कि हमारा बच्चा पिट रहा है, तुम उसमें गलती भी नहीं मान रहे। मैम कोई मैनेजमेंट अपने सामने लाइव CCTV अपने सामने डेली देख रहा है, उसको ये भी नहीं दिख रहा उसमें 3 घंटे की किसी का बच्चा एप्रेन से बांधा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। मैम या तो इसमें वो लोग शामिल थे, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुँह बंद कर लिया अपना, फिर वो बात को पलटने लगे कि हम पूछते हैं। जब हम इसके लिए CCTV के लिए भी स्कूल मेरी वाइफ गई थी तो जो ऑनर थी उन्होंने आपस में पहले बहुत देर बात करी है कि ये CCTV के लिए आए हैं, मतलब उन्होंने वो CCTV में देना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने आपस में पहले बातें करी है, फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी इन्हें CCTV दे देंगे तो ये लाइव देखेंगे तो आगे को हम बच्चे के साथ नहीं करेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैम हमने सबसे पहले पुरानी फुटेज देखी जिसमें बच्चे के साथ उल्टी हुई थी, जो उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी।
4: आपकी अब मांग क्या है?
3: 4 दिन की फुटेज आ गई।
4: आपके लिए जस्टिस कैसे लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक जस्टिस इज इन दिस केस?
3: इसको गिरफ्तार किया जाए। मैम मेरे को तो इतना ये चाहता हूँ मैम ये जल्द से जल्द अरेस्ट हो, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ इसमें, एक आया सिर्फ अरेस्ट हुई है
4: जी। सर थैंक यू सो मच, वी ऑफ कोर्स हैड टू विदहोल्ड द नेम ऑफ द फादर इन दिस केस बिकॉज दिस इज अ पॉक्सो केस, वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल और द चाइल्ड, बट थैंक यू सो मच, दिस इज बीन अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू एंड आई होप यू गेट जस्टिस एट द एंड ऑफ द रोड एंड आई होप योर सन फील्स बेटर, दैट इज मोर
3: इंपॉर्टेंट। और बताना चाहूंगा मेरे बेटे के जी,
4: बोलिए
3: मैम। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
4: जी,
3: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। वो अब ऐसा हो चुका है, इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1, 2, 3, ABCD भी बुलवाते हैं ना तो अपने दोनों, अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पर लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे। वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है मैम।
4: आर यू टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर सर?
3: उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो बताओ, उन लोगों ने तो मैम कल को मर जाता। हाँ जी
4: आप डॉक्टर के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास?
3: हेलो मैम आज उसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट है मैम, अभी रक्षाबंधन था फिर सैटरडे संडे आ गया था तो आज मंडे आज उसकी काउंसलिंग स्टार्ट है मैम।
4: दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही कठिन रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, वी विल प्रे, वी विल होप एंड वी विल मेक श्योर दैट वी हेल्प यू गेट जस्टिस इन दिस केस। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू NDTV।
2: In news just coming in, a disturbing case has emerged from the national capital where a 16-year-old girl from Uttar Pradesh was allegedly gang-raped inside a moving sleeper bus while trying to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: other groceries, everything which is required in that side of Nepal is being ferried back. There are sacks and sacks of grains, there are cookers being sent, there was a generator which was being sent, there's utensil, there are food articles which are constantly being ferried to Shapru and Timur Bazaar. In Dhunche, with camera person Pooja Arya, this is Sikta Deo for NDTV. Continuous rescue work is on in the Rasua district, and well, this was the area which has faced maximum destruction after the flash floods. We are at Dhunche helipad, where the army helicopters and administration and Nepalese government helicopters are constantly sorting from this helipad, taking all the basic amenities like generators, food articles, medicines, continuously towards Timur Bazaar and Shapru. Well, that's the area which has been completely cut off from this side of Nepal, and the priority is to reach out to those people who are stranded there. And also during rescue operations, the bodies which are being recovered are being brought back by these helicopters. You can see how the articles are being loaded here. This is the way they are operating since yesterday. It is a huge task. Since yesterday, this rescue operation has been on at a war footing, and right now behind me, constantly the helicopters of the army and the government are sorting and taking whatever is required right now to the China-Tibet border. From Dhunche helipad, this is Sikta Deo with camera person Pooja Arya for NDTV.
1: अब आगे आपको काठमांडू पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, और आप बता रहे थे कि वहां आप सेना के साथ थे, सुरक्षित रखे गए थे, और जैसी सुविधा हुई आपको यहां पहुंचाया गया आज। आप इस दौरान आपने इन दिनों में वहां क्या देखा है? शापरू बाजार में रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं? आपने क्या देखा?
2: रेस्क्यू करने के लिए बहुत डेंजर है, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजर है, जाने से बहुत डर लगता है इंसान लोग। हम इस 6 दिनों में बिना लाइट के बस, जब रात हो जाएगा ऊपर जाएगा बैठेगा, जब सुबह आ जाएगा दिख जाएगा, किस भी नहीं।
1: तो नीचे जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या देखा है आपने, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल
2: रहा है? सब ठीक चल रहा है, चलना हम लोगों ने जितने सर्दी बॉडी निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत डेंजर है, मूट है ना, बहुत गीला है, माटा माटे बहुत गीला है ना, तो जाने से बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ होता है उन लोगों को, तकलीफ हो तो भी जाके बॉडी उठा के लेता है।
3: 6 days after the flood disaster at the helipad in Nuwakot in Nepal, people are still searching for their loved ones through photographs printed on newspapers. My colleague Ranveer has spoken to a family from Ranchi that has travelled to Nepal to find their loved ones.
4: नेपाल की बाढ़ को 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 6 दिन बाद भी जिंदगी कहीं ना कहीं ठहरी हुई है और लोग अपने परिजनों को तलाशने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं इस वक्त आर्मी बेस कैंप पर हूं, और आप तस्वीर देखिए कैसे एक लिस्ट है। इस लिस्ट में कुछ तस्वीरें हैं जो शव बरामद हुए हैं, और ये क्षत विक्षत हालत में जो तस्वीरें शवों की हैं, उन शवों की तस्वीरों को यहाँ की पुलिस, आर्मी, जो भी लोग भटकते हुए अपने परिजनों को ढूंढते आ रहे हैं, उन लोगों को दिखा रही है, पहचान कराने की कोशिश कर रही है, और हर शव के साथ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कोशिश ये है कि किसी की पहचान हो जाए, और जो लोग यहाँ भटकते हुए दूर दूर से अपनों की तलाश में आए थे, अब उनके मिलने की गुंजाइशें तो कम हैं, लेकिन अगर वो शव यहाँ पर बरामद हुआ है तो कम से कम उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा सके। इस तरह से एक संघर्ष चल रहा है, दूर दूर से लोग आकर के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं, परेशान हैं, और इस बीच प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो मदद करें, लेकिन लोग इन शवों की तस्वीरों को देखकर भी पहचान पाने में मुश्किल में आ रहे हैं, और इस तरह से एक कोशिश अपनों को ढूंढने की लगातार दिखाई दे रही है। ये देखिए मेरे हाथ में एक लिस्ट है, और इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें, उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, पुरुष है, महिला है, जो मिसिंग लोगों की लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पर इस तरह से रखी गई है, और ये सारे जो लोग हैं जो यहाँ भटकते आए हैं उनको दिखाई जा रही है।
5: मेरा गांव का एक आदमी लापता है, खोजने के लिए आए।
4: कब से मतलब कब कहाँ थे वो?
5: त्रिशूली 3B।
4: अच्छा, टनल पे?
5: नहीं,
4: पावर प्लांट पे।
5: पावर प्लांट में
4: वहाँ काम करते?
5: ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में था, वहाँ काम करते था।
4: तो उनकी तो संभावना ये भी है कि वो टनल में फंसे हुए हों या बह के आए हों, कुछ नहीं पता?
5: नहीं पता।
4: कुछ तस्वीर वगैरह मिली है?
5: नहीं मिला है।
6: मैं परसों से यहाँ पे हूँ, लैंग्वेज के चलते कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है नेपाल मिलिट्री से। इंडियन मिलिट्री बेस यहाँ है नहीं, ऊपर में कहीं बना हुआ है। एक इंडियन मिलिट्री आर्मी मुझे मिले, मैंने उनको अपना वो लोकेशन।
4: आपका लापता कौन है?
6: मेरा छोटा भाई।
4: हाँ भाई, कहाँ घूमने आया?
6: नहीं, वो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट में एडमिन का काम करता था। जस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर शांतिपुर करके एक जगह है, शांति बाजार सॉलिटेयर मार्केट के पास, वहाँ पे तो अभी कुछ नहीं बचा। लेकिन परसों जो लोग रेस्क्यू किए थे उनके टीम से, उन्होंने उनको भागते हुए देखा था। बट वो वहाँ पे एक स्टैंडिंग पहाड़ है, सीधा स्टैंड पहाड़ है, तो उस लोग बाकी लोग तो चढ़ गए, ये बीच में कहीं मिड में फंस गए हैं जहाँ पे ये स्टक हो गए हैं। इधर ब्रोकन हो गया हाथ पैर कुछ, या फिर कुछ चोट लगी है।
3: Nepal is also staring at a massive reconstruction bill after the devastating floods that have ravaged parts of the country. The initial estimate is between $4 and $5 billion, which is around a third of Nepal's annual budget and close to a tenth of its economy. Nepal's finance minister has stressed that this is only an initial estimate. Here's a report.
7: The scale of devastation in Nepal is now translating into a staggering economic crisis. The floods have ripped through communities in the Himalayan border region, leaving behind a trail of destruction. Homes and infrastructure damaged. Roads and bridges have been swept away. And critical hydropower projects have also been hit. But as Nepal battles the immediate emergency, the country is already looking at the cost of rebuilding. Finance Minister Swarnim Wagle says the initial reconstruction estimate is between $4 and $5 billion. That's around a third of Nepal's 2026-27 budget, which is estimated at $15.9 billion. The figure is equivalent to around 10% of its economy and roughly a third of its $15.9 billion annual budget. The figure is only an initial estimate. For a country still battling the immediate human crisis, the road to recovery is already shaping up to be an enormous financial challenge. The World Bank has offered up to 25 billion Nepalese rupees in emergency financial assistance for rescue, relief and reconstruction. India has already provided humanitarian assistance and disaster relief. New Delhi has stepped up its support with 62 tons of relief material, 3 military airlift and IAF helicopters, while deploying a specialized tunnel rescue team and a 6-member forensic team.
8: The generosity of the Indian government has been really noteworthy. And as you can see, there have been special supplies flown in from New Delhi at this time. But for the reconstruction itself, I think you know, the government of India has indicated to us that they would be able to provide very generous assistance, and that has been forthcoming from all our neighbors as well.
7: For now, however, the search continues. Nepal is still counting its dead, searching for its missing, and trying to reach communities cut off by the floods. But once the waters recede, the next battle will begin, the battle to rebuild. Bureau Report, NDTV.
3: Here's the worrying news. The Nepal floods may also have another major impact, this time on India, as flood waters move downstream. Parts of Madhya Pradesh are already witnessing severe flooding and waterlogging. Chitrakoot is facing severe flooding, while Satna is seeing flood-like conditions, and Panna remains on waterlogging alert. But the bigger concern now is the rising water levels at reservoirs across India. The flood situation in Chitrakoot worsened after the Mandakini River swelled, causing damage to infrastructure, including the Ramghat Bridge, and affecting several nearby villages. With more water making its way downstream, authorities are closely monitoring the situation. My colleague Akash Zavedi now joins me live from Chitrakoot in MP. Akash, what can you tell us about the situation in Chitrakoot?
9: देखिए, लगातार जो मंदाकिनी का जलस्तर है, चित्रकूट की प्रमुख नदी है, वहाँ का जलस्तर बढ़ रहा है। तस्वीर देखेंगे आप कि

0: जो घर हैं वहाँ घर के आसपास भी नाव के सहारे चलना पड़ रहा है। कुछ दूर के बाद मंदाकिनी का घाट है जिसका जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव बहुत तेज है। दो दिन पहले तक यहाँ दो मंजिला जो इमारतें रही हैं वो दो मंजिला इमारतें भी डूबी हुई नजर आई थी और यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति है इसके साथ ही जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, खासतौर पर नाविक जो परिवार हैं वो नावों में अपने सामान को लेकर जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी का तट है, रामघाट के पास का इलाका है, यही रामघाट है जो दो दिन पहले तक पूरी तरीके से डूबा हुआ है और जिस नाव में हम सवार हैं अभी ये परिवार खाना तक यहाँ पर बना रहा है क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जो घर हैं वो अभी भी डूबे हुए हैं, 10-10, 15-15 फीट तक जो नीचे से गहराई है वो देखने को मिल रही है। बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि यहीं पर किचन भी बना के रखा है और यहीं पर सोने की भी व्यवस्था कर रखी है। दीदी और कोई जगह नहीं बची है आपके पास?
1: अब और कोई जगह नहीं बची है भैया।
0: क्या करते थे आप लोग, कितना नुकसान हुआ है?
1: हम लोग तो एक धंधा किए थे, होटल भोजनालय था, वहाँ तो हमारी कुर्सी टेबल तक बह गई है, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं है, बिछाने ओढ़ने के लिए तक नहीं बचा है। जहाँ तक हम रक्षाबंधन का त्योहार करने चले गए थे,
0: घर गई थी आप?
1: हाँ, अपने मायके चले गए थे।
0: बोट पर कितने दिन से है, नाव पर कितने दिन से आप?
1: 3 दिन से है।
0: 3 दिन से इसी नाव पर है।
1: हाँ।
0: खाना भी यही बन रहा है?
1: खाना 3 दिन के बाद बना रहे हैं, आज बना रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं बच्चे लोग पेट नहीं भर रहा, भूख लगे तो पास वाले दिए हैं सब पड़ोसी लोग दाल चावल, तो बना के उनको खिला रहे हैं, थोड़ा तैयार कर रहे हैं।
0: ये जो बगल दुकानें हैं, जो घर है वो कितने डूबे हुए हैं, क्या यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है?
1: यहाँ तो बहुत गहराई है, गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं है, इतना गहराई है यहाँ।
0: तो लोग जो है वो यहाँ पर यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। एक बार और तस्वीर अगर हम मंदाकिनी का दिखाएं तो मंदाकिनी का जलस्तर क्योंकि नाव की वजह से थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बहाव है नदी का वो बहुत ज्यादा तेज है। बीच में पानी थोड़ा बहुत कम हुआ था लेकिन कल रात में जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद से फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है।
2: All right, thank you for that report. We will keep coming back to you for more. That's a live report from Madhya Pradesh on the worrying situation there. The devastating floods in Nepal are of course raising concerns, like my colleague just pointed out, across parts of India, with several districts in Madhya Pradesh witnessing the impact of heavy rainfall and swelling river systems. In Chitrakoot, authorities are grappling with severe flooding, with rising water levels affecting low-lying areas and disrupting normal life. In Satna, residents are facing flood-like conditions as continuous rainfall and overflowing water bodies have inundated several stretches. Meanwhile, an alert has been issued in Rewa, where officials are closely monitoring the situation amid fears of waterlogging and further flooding. As Nepal battles one of its worst flood disasters in recent years, the ripple effect is being felt downstream, prompting authorities in the state of Madhya Pradesh to continue to remain on high alert. A horrific case of alleged gang rape has emerged from the national capital, involving a 16-year-old grade 12 student from the state of Uttar Pradesh. Police say the teenager was traveling alone after leaving home following a disagreement with a family and was trying to reach her relatives in Noida, Sector 63. According to Delhi police sources, the driver and conductor of a sleeper bus allegedly lured her by promising to drop her at Sector 63. Police alleged the teenager was then gang raped inside the moving bus during the journey. CCTV footage helped police identify the bus, leading to the arrest of the driver and conductor. The accused have been identified as 39-year-old Kuldeep and 26-year-old Sandeep. The bus has also been seized, and of course forensic examination is underway as the investigation continues.
3: ये 4 अगस्त से पहले गाड़ी सूरजपुर हेमगिरी में अशोक लीलैंड कंपनी में अपना काम करा रही थी, जिसका एक सेंसर ना मिलने के कारण ये गाड़ी 6 से 7 दिन वहीं खड़ी हुई थी। उसके अलावा ये गाड़ी का जब सेंसर आया तो ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गाड़ी पे मौका वारदात पहुँचे तो गाड़ी सही मिली वहाँ से, तो कंपनी ने उसे रिलीज कर दिया कि आप ले जा सकते हैं, गाड़ी सही है आपकी। उसके बाद इन्होंने शाम को 5 बजे सूरजपुर से गाड़ी निकाली है हेमगिरी से, उसके बाद इन्होंने गाड़ी वहीं खड़ी कर ली है कहीं साइड से। उसके बाद ये 9 बजे निकले हैं हिमगिरी से, उसके बाद में इन्होंने क्या हुआ है ये हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन बाकी इसमें जो वारदात हुई है उसके जिम्मेदार ये स्वयं है, वो इन्हीं को पता है।
2: तेजश्री जॉइंस मी लाइव फ्रॉम न्यू दिल्ली। तेजश्री, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेप सर्वाइवर फर्स्टली, एंड वेयर डज द इन्वेस्टिगेशन स्टैंड एज ऑफ नाउ? द अरेस्ट हैव बीन मेड, व्हाट इज द पुलिस telling you about this incident?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

हर रोज 3 decades ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. Meet her.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़.

0: देखेगी, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा, एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया। और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी।
1: इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद कुड बिल्ड व्हाट स्टैंड्स हियर टुडे, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदाणीज सिंपली वेटिंग फॉर समवन टू नोटिस देम।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम।

कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का, और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का। सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को

अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित हुआ। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा। 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार। इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज वुमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश न होना। बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज।

Welcome to Vande Bharatam, an initiative by Gautam Adani. Commentors, मैं एक चीज सोच रहा था कि कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं बिजनेस के लिए, कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं जरूरत की वजह से, पर कुछ स्टार्टअप शायद ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए एक गिफ्ट होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको उसकी बेहद ज़रूरत होती है और वो इनोवेशन उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। उनकी इनोवेशन कुछ इसी तरह की है। हमारे जो पहले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ वेलकम टॉर्चिट स्टार्टअप के फाउंडर मिस्टर हनी भक्त चंदानी।

0: प्रथमेश आप यहाँ पर, मैंने तो कहा था कि हनी भगचंदानी।
1: ये सब पर जैसे रेनबो से पहले धूप और बारिश आती है और फूल से पहले कलियाँ, वैसे फाउंडर से पहले मैं आ गया।
0: अरे आप आ गए, क्या बात है, कितनी प्यारी बात की इन्होंने।
2: बहुत बढ़िया।
0: सो वेलकम टू वंदे भारतम प्रथमेश।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: आपको मैं दिख रहा हूँ?
1: हाँ, आप ज्योति मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सामने जीत अटानी सर हैं और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर, और राइट में है स्वाति मैम और मितेश सर।
0: क्या बात है, और ये बताओ कि मैंने क्या पहन रखा है?
1: मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप एक बार जजेस की जो चेयर है आप वहाँ पर जाइए, वो पूरा एरिया स्कैन करके बता सकती है।
0: ओके। मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
1: यस कैप्चरिंग।
3: एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है। उसके दाईं ओर 5-6 अन्य लोग सुनहरी कुर्सियों पर बैठे हैं।
0: क्या बात है,
3: पीछे की बड़ी स्क्रीन पर पेड़ों और घरों के साथ एक शांत ग्रामीण दृश्य दिख रहा है।
0: What an innovation, please.
2: Thank you.
0: Round of applause.
2: So sweet. So nice.
0: अच्छा, तो आप ये बताओ कि हनी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
1: वो बिल्कुल आ रहे हैं सर। हनी भैया आ जाइए, वेलकम।
4: वेरी गुड।
0: क्या इनोवेशन है, आई थिंक सो मेनी ऑफ देम जिनके पास में आई साइट नहीं है,
5: yes.
0: वो कितने ग्रेटफुल होंगे आपकी इस इनोवेशन के लिए।
5: थैंक यू सर, उसके लिए हमको भगवान की दया से बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल चुके हैं, और ऊपर वाले की वजह से हमने बहुत लाखों लाइफ को इम्पैक्ट भी किया
0: जी। और आज आप वंदे भारतम के मंच yes. पर हैं, आपकी पिच रेडी है?
5: 100%
0: जी। तो आपके पास में है 3 मिनट का समय और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
5: ओके, सो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं प्रथमेश से सुनना चाहूंगा कि आप प्रथमेश आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो?
1: मेरा सपना एक IAS ऑफिसर बनना है, और आप सब लोग को पता है उसमें कितनी ज्यादा पढ़ाई होती है, जो की वजह से मैं बहुत इंडिपेंडेंट बना हूँ और पढ़ाई बहुत आसानी

0: छुपाती है। पहले मेरे पास ये डिवाइस था सारथी, सो उससे मैं मार्केट लाइक शॉपिंग घूमने जा सकता था, पर अब ज्योति की हेल्प से मैं शॉपिंग कर भी लेता हूँ अब आराम से।
1: मेंटर्स नमस्ते, जिस तरीके से प्रथमेश का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, उसी तरीके से हमारे करोड़ों दिव्यांग भाई बहन के सपने हैं इंजीनियर बनना, टीचर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। वो सपनों के अपॉर्चुनिटी के बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं अपने ग्लासेस निकाल दूं तो मैं आप सबके चेहरे ध्यान से नहीं देख पाऊंगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से चश्मे मुझे हेल्प करते हैं, उस तरीके से असिस्टिव डिवाइसेस हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हेल्प करते हैं अपने काम को आत्मनिर्भरता के साथ करने में। और वहीं से शुरुआत हुई ज्योति एआई ग्लासेस की। अगर मैं मोबिलिटी डिवाइस की बात करूं तो 40 से 50 हजार रुपए का डिवाइस था, हमने उसको भारत में बनाया 3 से 4 हजार रुपए में। और तो ज्योति एआई ग्लासेस के थ्रू हमारे विजुअली इम्पैक्ट भाई बहन आपके सामने क्या हो रहा है ना सिर्फ वो देख सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एजुकेशन लाइक कोई भी प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ सकते हैं, वो भी 90 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। और सबसे बड़ी बात कि इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ज्योति एआई से आज 40,000 से ज्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहन पीएचडी कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स खुद लिख रहे हैं। और हमारा सपना ये है हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाए, हम सारे दिव्यांगताओं के लिए जैसे हियरिंग है, ऑटिज्म है, कम्युनिकेशन है, उन सब के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एआई के थ्रू बनाएं। और सबसे बड़ी बात, मेरा मिशन ये है कि हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाएं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। और मेरा विजन ये है कि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मेरा आस्क ये है कि हम 7 करोड़ के बदले 3% की इक्विटी हम ऑफर करते हैं। और साथ में हम एक सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे, हम एक सुने भारत में ऐसा बना रहे हैं कि डिसेबिलिटी कोई सपने की लिमिट ना बने। हर किसी में दम है, हर किसी के अंदर टैलेंट है, हम सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और साथ में मिलकर इंडिया को ग्लोबल हब बनाते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। जय हिंद।
2: अमेजिंग, वाओ,
3: फैंटास्टिक,
2: टू गुड, टू गुड। दत्नेश, यू आर सो इंस्पायरिंग।
4: वेरी नाइस सर, गुड जॉब। ये जो असिस्टिव वाली टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
1: 100%, दैट्स व्हाई आई एम हियर, के हम साथ में मिलके ये इनोवेशन से ग्लोबल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं।
5: तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट आएगा चश्मे के साथ या अलग से इस पे चश्मे पे भी मैं अपने चश्मे पे लगा के यूज कर सकता हूँ?
1: जो आप बात करें सर, वो हमारा सेकंड वर्जन था जो थी एआई प्रो, वो कोई भी ग्लासेस को एआई ग्लासेस बना सकता है। और जो प्रथमेश ने पहना वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो थी एआई विजन ग्लासेस, कम्प्लीटली वायरलेस है।
5: क्या कॉस्ट रहेगा दोनों का?
1: इसका प्राइस 20,000 रुपये।
4: ओके,
1: और साथ में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हमारा यही मोटो है कि यार हम किस तरीके से हमारे लाखों करोड़ों दिव्यांग लोगों तक पहुंचे।
6: तो आर सेल टुडे हैपेंस थ्रू ओनली आवर ओन प्लेटफॉर्म या आप दूसरे प्लेटफॉर्म?
1: नो, इट्स ऑल चैनल्स, लाइक आपको हमारे प्रोडक्ट सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, अमेज़न से लेके बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। B2B2C भी बहुत सारे जो मेडिकल शॉप्स हैं, हमने ऑफलाइन भी एक्सपेंशन किया है, हमारे खुद के भी सेंटर्स हैं, हमने वहाँ पर भी एक्सपांड किया।
6: तो आज वंदे भारत हम के प्लेटफॉर्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
1: मैं आस्क हियर के 7 करोड़ से हम R&D में खर्चा करेंगे, हम मार्केटिंग में खर्चा करेंगे और अपना कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और हम इसको इकोसिस्टम बनाएंगे।
2: well, सबसे पहले तो आई थिंक हमें इनको वंदे विंग्स देना चाहिए।
3: या, 100%।
2: यहाँ पे है आपके पास इतना, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, दैट्स इनक्रेडिबल।
7: मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, जो मेंटर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको वंदे विंग्स मिलने चाहिए, और वंदे विंग्स का मतलब है कि आपको 10 दिन की मेंटरशिप मिलती है अदानी ग्रुप की तरफ से।
2: रत्नेश, आई रियली वांट टू गिव यू अ हग आल्सो, यू आर सो इंस्पिरेशनल, सो नाइस टू मी।
8: थैंक यू मैम, थैंक यू।
7: कोई ऐसा बड़ा आपको मोमेंट याद है जहाँ पर आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: कोविड का जब लॉकडाउन आया तब हमारे जो एक ही प्रोडक्ट था तो वो सारा का सारा डंप हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक। और जितने भी पैसे थे, जितने भी हमने पैसे बचाए थे, तो वो सारे खर्च हो गए और हमारे पास रनवे बचा नहीं। और जितनी भी टीम थी तो वो 40 लोगों की टीम में से हम 3 या 4 लोग बचे। तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट एक था कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, भगवान कुछ ना कुछ, ऊपर वाला कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। माय फादर ऑलवेज बिलीव इन मी। एंड
7: आपने कहा कि एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद शादी हुई कि नहीं हुई?
1: हुई, हुई।
7: उन्हीं से हुई
1: और शी वाज माय लाइक बैकबोन टू बी वेरी फ्रैंक।

0: मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। लाइक अगर आप सिंगल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो फेल हो गए, जब आपके पास एक और पर्सन है जो आपके ट्रस्ट पे आ रहा है एंड आपका कंपनी उस टाइम पे बंद हो रहा है, बट उसने बोला कि मुझे तुम पर विश्वास है एंड वो यकीन ने
1: आपको यहाँ तक ले आए, लेकिन इतने बड़े मंच पर आप आए अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए।
0: अरे शी ओ, दिल से आना चाहती थी बट नहीं आने थी,
1: लेकिन हमने जब उन्हें बुलाया दिल से तो वो यहाँ पर आ गई है। प्लीज प्लीज वेलकम हनी जी की वाइफ। बड़ा सरप्राइज।
2: So proud of you, dude.
1: Welcome, Ritu
0: ji. I am proud of you to have read my life.
1: Ritu ji, thank you so much. आपको हमारी तरफ से कि आपने इस innovation को इतना support किया कि आज ये वंदे भारतम के platform पर खड़ी है। आपकी आंखें नम हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप?
2: Why he cried and he became emotional is because I am having a medical condition now. So, I'm suffering from stage 3 breast cancer.
3: Oh no.
2: My surgery is done. My chemos are done. I have recently got my 7th chemo. Only one chemo is left. The hairs that you see all are artificial. So with that condition, if I can come and support him.
3: Hats off to you, Ritu. This is not easy at all. Both of you are literally changing lives.
4: Truly inspired.
3: Kitna kuch diya hai aapne.
2: Being myself a doctor but now a patient but most importantly a proud wife.
1: And I'm very sure ki aapki jo positivity hai, sakaratmak soch hai, आपका जो सपोर्ट करने का जज्बा है, आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी सून।
2: थैंक यू।
5: आई वांट टू ऐड समथिंग।
1: या प्लीज पुनीत।
5: तो मैं 1.5 साल पहले ही फादर बनाऊँ और उसके बाद पता नहीं क्या बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशन मेरा अलग से निकल रहा है। प्रथमेश को देख के एक तो मैं उसका फैन हो गया और प्रथमेश बहुत अच्छे लग रहे हो आप। एंड मैं आपको अभी बिजनेस देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 50 लाख के डिवाइसेस हम खरीद के अंडर प्रिविलेज बच्चों को डोनेट करें, तो मेरी तरफ से भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा
1: लगेगा। मुझे लगता है ये वंदे भारत का प्लेटफॉर्म इसीलिए इतना खूबसूरत है बिकॉज वी फील फॉर ईच वन ऑफ अस। So congratulations aapko and thank you so much Puneet for being so kind. Hi. And of course

0: मैं ऑफर देना चाहता हूँ, सो आई कैन लुक एट 1.5 CR for 7.5% stake in the company.
1: That would be a challenge, Mitesh ji, because we already have signed term sheets from two of the other investors who are getting in. So we would request you can come in maybe at the valuation that we are requesting.
0: My commitment can be higher as well. I can come in at 20 crore pre-money. That's my offer.
2: We'd love to take your offer if we can have an idea about what can be the maximum amount you're planning to invest. If we can do the round in primary and secondary dealing together, where we maintain the valuation, where you come in with the amount and we give you an advisory equity to as a secondary share to get up to the valuation that you're talking of.
0: So we'll work out something. Deal.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, sir.
0: ये लीजिए आपका शुभारंभ लिफाफा.
3: Congratulations, guys.
0: Congratulations.
1: Life master, sir.
2: Thank you, sir.
4: Well done.
0: Thank you.
1: Thank you so much.
3: चलिए आपकी पार्टनरशिप का शुभारंभ हुआ. मैनी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.
3: होप टू सी यू इन द फिनाले.
2: थैंक यू.
3: एंडोर्स कोर्स. तो हमारे जो अगले इनोवेटर है ना, तो ये आ रहे हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से. प्लीज वेलकम डॉक्टर स्पेक्ट्रा. तैयार हैं पिच के साथ में आप लोग?
4: बिल्कुल तैयार हैं.
3: ओके, आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
4: कैन यू इंक्रीज माय ऑडियो हियर प्लीज, कम इन इफ यू कैन हियर मी. कैन यू इंक्रीज माय ऑडियो? आई कांट हियर
5: दैट. आप बोल रहे हैं सबका?
4: क्या हुआ, इरिटेशन हुआ आवाज से? जी आप कल्पना करो, इस तरह की आवाज आपको अगर 24 घंटे आपके कानों में बजे और रात में उसकी वजह से क्या आप सो पाओगे? क्या आप ऑफिस में काम में फोकस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टिनाइटिस. कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों को ये टिनाइटिस की समस्या है भारत में. इन समस्याओं की वजह से लोगों का सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम ही नहीं, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बच्चों का कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, करियर ग्रोथ, ओवरऑल सोशलाइजेशन और लाइफस्टाइल इफेक्ट करती है. जी हाँ, इन्हीं समस्याओं के सोल्यूशन के लिए आया है डॉक्टर स्पेक्ट्रा वेलनेस. तो हम लोगों ने होम बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस बनाई हैं. ये डिवाइसेस जो हैं वो इजी टू यूज हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव, ड्रग फ्री और पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जिसे CDSCO, ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त है और पेटेंटेड भी है. हमारा सबसे हॉट प्रोडक्ट है टिनाइटिस, जो कि कानों में सीटी घंटी बजती है उसके लिए है हमारी टिनाइटिस रिलीफ मशीन. और हमारे इनोवेशंस को नेशनल लेवल पे भी बहुत अप्रिशिएशन मिला है.
6: पिछले 5 साल में हम 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स की लाइफ चेंज कर चुके हैं. हमारे अभी 10 से ज्यादा मेट्रो सिटीज में डिवाइसेस अवेलेबल है और अगले 2 साल के अंदर हम 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मेसी के संग टाइप करके इसको फैलाना चाहते हैं. इसके लिए हम 10% इक्विटी के लिए 2 करोड़ का आस्क करते हैं.
4: हम आपसे सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, आपकी मेंटरशिप, आपका गाइडेंस, आपका क्लिनिकल कोलैबोरेशन और ग्लोबलाइजेशन की आशा रखते हैं, ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों तक इस इनोवेशन को पहुंचा के भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाकर देश में तरक्की कर सके.
0: क्या प्राइसिंग है इसकी, ये डिवाइस प्राइसिंग?
6: डिवाइस प्राइसिंग हमारा 25,000 से हम देते हैं 1 ईयर के फॉलोअप पैकेज के साथ.
7: आई थिंक टिनाइटिस एक बहुत एक एरिया है जहाँ पे इनोवेशन की बहुत जरूरत है. आई वुड लव टू कनेक्ट यू टू सम हॉस्पिटल ओनर्स, सो वी शैल कनेक्ट ऑन दैट.
4: थैंक यू.
5: You know, I really like your passion. Yeah.
7: Mm. Yeah, I think you should.
5: We sure. Should
7: we do the? Yeah.
4: Thank you so much.
5: We'd love to mentor you more.
4: Thank you.
5: Thank you so much. Thank you. Congratulations.
6: Thank you.
5: Great meeting you.
3: Mentors, time to score. आप अपने अपने scores दे सकते हैं.
8: वंदे भारतम के मंच पर दिखे देश के कोने कोने से आए अनोखे आइडियाज. इनोवेटर्स ने अपने यूनिक आइडियाज और विजन से मेंटोर्स को किया प्रेरित.
9: सही टाइम पे एक भरोसेमंद कबाड़ी वाला मिलता ही नहीं, जिसके वजह से हम अपना कीमती कबाड़ कचरे में फेंक देते हैं. इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है कबाड़ी मैन.

0: देहरादून की सन फॉक्स टेक्नोलॉजीज के पोर्टेबल ईसीजी स्पंदन।
1: स्पंदन ईसीजी एक ईसीजी मशीन नहीं है, ये कार्डियक केयर इकोसिस्टम है।
0: और पुणे के डेनोवो बायो इनोवेशंस के ऑटोमेटेड सूचरिंग सिस्टम स्मार्ट स्टिच ने मेंटोस को इम्प्रेस किया।
1: हम बनाते हैं एडवांस इनोवेटिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।
0: वहीं बरीपदा उड़ीसा से आए कैसवीटा प्राइवेट लिमिटेड के बायो सेल ग्लू बैंडेजेस और उन्हें मिले मेंटोर से वंदे विंग्स और 10 दिन की मेंटरशिप अदानी ग्रुप के साथ।
2: आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV इंडिया, NDTV प्रॉफिट और NDTV डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में। प्लीज वेलकम संगा रेड्डी तेलंगाना से भौम्या इनोवेशंस के इनोवेटर दीपक रेड्डी एंड अमरेश जना।
3: आप अगर आज भौम्या पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
4: लेट्स डू 2 crore एंड फॉर 20%। ओके, दैट्स आवर ऑफर टू यू।
5: सर, कैन वी डू इट लाइक 10% इक्विटी फॉर 2 crore?
6: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
7: थोड़े में ज़्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: these visuals that are coming in.
1: For those very important visuals there, these are the latest visuals from that bilateral meeting that took place between President Putin and Prime Minister of India, Narendra Modi. This is India-Russia meeting on the sidelines of the SEO summit in Kyrgyzstan. It's a time-tested friendship, and President Putin is all set to address media. Aditya, if you're there, also help us understand, for India's security of energy supplies and trade routes through this region is going to be critical, and also import of Russian oil became quite a bit of a geopolitical dilemma for India a few months ago. Where is India on that front right now when it comes to India-Russia relationship? What do you think is going to be number one topic on agenda when these two leaders meet?
2: That recently your foreign minister, Mr. Jaishankar, visited Moscow and conveyed your message. I fully share everything that is said there. Next year, we are celebrating the 80th anniversary of our diplomatic relations. And of course, we're doing serious preparations for the upcoming BRICS summit in New Delhi in September. Our trade and economic cooperation is demonstrated generally positive momentum. Last year, we saw a little increase, but in the first half year of 2026, our trade turnover grew by 2.6%. A week ago, Moscow hosted the session of the Intergovernmental Commission. It also demonstrated good results. I'd also like to say a couple of words about humanitarian cooperation of ours. I'd like to note that India is among the top countries in terms of its students in Russia. In the recent years, this figure has grown by 7 times, and it amounts to 40,000 students now. We regularly hold cultural festivals of India and Russia. The 2027 will see another round of the festivals in India. We also have active tourist flows, mutual flows. We've seen 16% growth. We closely coordinate our efforts at the United Nations, at BRICS, the G20, and the SCO. And today we have a good chance to compare our notes and to outline future cooperation when it comes to the development of the Russian-Indian relations.
3: Excellency, my friend, aapse milkar मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ. और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं. ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा। कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। धन्यवाद। स्पासिबा।
1: Prime Minister Modi there making a very important point that we need to go to end of war from endless war. Gauri Dwivedi joins us. We also have Aditya Rajkaul from Kyrgyzstan. Gauri, to you first. Help us understand, this is very similar to ye yudh ka yug nahi hai, right? This is an important message coming in from the Prime Minister. And of course, both of them looking forward to the BRICS summit that's going to happen in a few days from here on.
0: Indeed, I think, you know, the message that he sent every single day that is towards peace is a huge step for humanity. I think the message that at the end of the day, endless wars need to end is, I think, the single biggest message that has once again come from India, from Prime Minister Modi to Russia. This is the second time. Remember, a couple of years back, I think it was at Samarkand, when the first time India had said, Prime Minister Modi had said that this is not an era of war. And now again, this is not a time of endless wars, it's time to end the war, is again a message that is coming towards peace from India itself, from New Delhi, that the Russia-Ukraine conflict that's been going on since February 2022 must come to an end. Lives have been lost on both sides, thousands and thousands of lives, and at the end of the day, you have to move towards peace. It is the strongest message that has come in from India, that the Russia-Ukraine conflict must end. And I think that's a very powerful message.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: Across the country,
7: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs.

0: माँ दिलवा के निशान थे, मांस मदड़ा था, तो उसके लिए हमने वहाँ सफाई अभियान करा था, वहाँ सफाई करी गई थी। और जैसे राहुल जी का बोलना है कि इन पर वो करा जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, तो हम उसी विषय को लेके आज कोतवाली आए हैं, जिससे कि हम राहुल गांधी जी के ऊपर FIR करना चाहते हैं और आज हम हर दलित समाज के लोग आए हैं।
1: Now this FIR against Rahul Gandhi has made the Congress go on a bigger offensive against not just the Uttarakhand government, the BJP government in Uttarakhand, but the BJP as a whole. The party is not backing down. In fact, today protests were held across Uttarakhand in multiple places across the state. Leaders of the Congress tried to get an FIR filed and they have questioned the selective action by the police. They say that this is nothing more than a witch hunt against Rahul Gandhi because he brought out in the open the caste mindset of the BJP.
2: भाई पहली तो बात कुछ अभी उन्होंने किया नहीं, अब राहुल जी के खिलाफ भी कर दिया तो साफ दिख रहा है। हमने ऑलरेडी आज के दिन हर कोतवाली में, उत्तराखंड की हर कोतवाली में हम FIR दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो नहीं दर्ज करते हैं हम कुछ और करेंगे। अब हम 7 तारीख को एक मेजर एजिटेशन करेंगे। बात ये है, चुनाव आ रहा है ना उत्तराखंड में, यूपी में और जगहों पर, ये सिर्फ वही पुरानी तकियानुसी बातें, अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तो ऐसी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं ये।
3: वहाँ पर कुछ दलित बंधु अपना वहाँ पर कार्यकर जो गंदगी हो गई थी उसको हटाकर, गंदगी मतलब किसी व्यक्ति के आने से गंदगी नहीं, जो गंदे चीज़ें पड़ी थी ऐसा उन्होंने कहा, तो उसके कारण वो लोग उस को वो कर रहे थे, पूजन पाठ कर रहे थे और वो भी दलित थे, और इसको गलत मुद्दा बना के दलित और दूसरे जाति का, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस को उचित नहीं है और इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए।
4: होना तो ये चाहिए था, जिन लोगों ने भारतीय संविधान का अपमान करते हुए भारत के कानून को चुनौती दी है, भारत में छुआछूत इस तरीके की चीज़ें बैन हैं, जिस व्यक्ति ने FIR की है वो दलित परिवार का हो सकता है मगर वो भाजपा का एक्टिव मेंबर है, हो सकता है संघ से भी उसका संबंध हो।
5: हालांकि उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, इन्होंने भी ये शुद्धिकरण वहाँ पर हवन किया था, लेकिन उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है।
1: And that brings us to the main questions on which the buck stops here. Is this an effort to try and give a casteist spin to what was a symbolic gesture in terms of that Shuddhikaran that was done at the Ram Leela Maidan? Why this Mahabharat over what happened at the Ram Leela Maidan? What will be the political fallout? And why is there an FIR against Rahul Gandhi but not against those who carried out this act of Shuddhikaran in Uttarakhand? Let's go straight across the guests joining us now. We have Ashutosh, senior journalist, author and political analyst, Shantanu Gupta also joining us along with senior journalist Rashid Kidwai. But my first question is to Dr. Ajay Alok of the Bharatiya Janata Party. Why is it that there was alacrity in filing an FIR against Rahul Gandhi but not against the people who carried out the Shuddhikaran? Surely that's a part of the law, right, Dr. Ajay Alok, that you file an FIR when a complaint has been lodged?
6: First of all, this matter does not concern Bharatiya Janata Party at all. We are not a party in this. Second of the thing, if a scheduled caste member or a scheduled caste person goes to police station and he says that I have to file an FIR because my intentions, my feeling are hurt and my caste is betrayed by certain people, police is bound to file an FIR. First of all, your question stands there. Now let me come.
1: Isn't the police also bound to file an FIR if the Congress wants an FIR filed? Sure, you want to have an FIR filed.
6: I'm coming.
1: Yes. What about the Congress FIR?
6: I'm coming to that point.
1: Yes.
6: Ranjay, I'm coming to that point. I was going to mention that. I was coming to that point only. Now this so-called Shuddhikaran was done on 10th, which they say that they performed puja because liquor bottles and other things were found in the campus where Prabhu Shri Ram installation is done every night, and since Dashara is approaching, so they did the Shuddhikaran there. That's what is their explanation, not Bharatiya Janata Party, first of all. 10th, the so-called Shuddhikaran was done. 11th, Mr. Kharge raises this issue in the parliament. JP Nadda assures him of all possible help. Uttarakhand government files an inquiry. does an inquiry, does not find anything unsubstantiative, conduct

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा प्योर मसाला।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
7: Across the country,
8: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
9: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
8: Three decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite. Across the country.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: your state of mind with a Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler Spa at home.
1: Electricity bill paid.
2: Really?
1: Your mobile recharge is done.
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. Hugs and handshakes in Bishkek as Prime Minister Modi and Putin meet on sidelines of SCO summit. Prime Minister bats for peace, says time to go from endless war to end of war. Putin, meanwhile, hails ties with India. Prime Minister Modi also meets Iran's President Pezeshkian, first meeting since West Asia conflict. Prime Minister raises seafarer's death. India and Armenia also hold talks in Bishkek. Prime Minister Modi hails 7.8% GDP growth, calls it a Herculean feat. He says doomers doomed, India bloomed, as he calls the GDP growth exemplary. Nepal's death toll rises to 903. Over 4,200 are still missing. Rescuers are struggling to reach those still stranded amid intermittent rain, swollen rivers and damaged roads and bridges as well. NDTV is reporting from Ground Zero. Delhi rape horror case comes to light. 16-year-old gang raped by bus driver and conductor, both accused arrested. Delhi woman's body takes cognizance, seeks an immediate action. Starting first up with the top story, Prime Minister Narendra Modi met with the Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit. During the meeting, Prime Minister Modi said that India advocates for resolving our problems peacefully, which is necessary for all of humanity. Prime Minister Modi also told Putin that every day of war sets humanity back and that we must work towards ending hostilities. India has maintained a cautious position on Russia's war in Ukraine and has consistently called for dialogue and diplomacy to end the conflict. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin said the ties between Russia and India were continuing to grow stronger and that Russia remains one of India's key strategic partners, especially in the defense and energy sectors.
1: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं. ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर

0: देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है, कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है, ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं। सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है, उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
1: दो दिन हो गए हमें।
2: दो दिन?
0: आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
1: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
0: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम। कितने लोग हैं आप लोग?
1: अभी हम लोग 20-22 लोग।
0: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
1: एयर कार्गो में सारा सामान है।
0: एयर कार्गो से?
1: बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
0: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोग लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है, उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले, तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
3: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: ज़रा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
1: दो दिन हो गए हमें।
2: दो दिन?
0: आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
1: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
0: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
1: अभी हम लोग 20-22 लोग।
0: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
1: एयर कार्गो में सारा सामान है।
0: एयर कार्गो से?
1: बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
0: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
3: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Left, right and center.
1: Hard facts.
0: War-struck country.
1: Hard questions.
0: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
2: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. Hugs and handshakes in Bishkek as Prime Minister Modi and Putin meet on sidelines of SCO summit. Prime Minister bats for peace, says time to go from endless war to end of war. Putin, meanwhile, hails ties with India. Prime Minister Modi also meets Iran's President Pezeshkian, first meeting since West Asia conflict. Prime Minister raises seafarer's death. India and Armenia also hold talks in Bishkek. Prime Minister Modi hails 7.8% GDP growth, calls it a Herculean feat. He says doomers doomed, India bloomed, as he calls the GDP growth exemplary. Nepal's death toll rises to 903. Over 4,200 are still missing. Rescuers are struggling to reach those still stranded amid intermittent rain, swollen rivers and damaged roads and bridges as well. NDTV is reporting from Ground Zero. Delhi rape horror case comes to light. 16-year-old gang raped by bus driver and conductor, both accused arrested. Delhi woman's body takes cognizance, seeks an immediate action. Starting first up with the top story, Prime Minister Narendra Modi met with the Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit. During the meeting, Prime Minister Modi said that India advocates for resolving our problems peacefully, which is necessary for all of humanity. Prime Minister Modi also told Putin that every day of war sets humanity back and that we must work towards ending hostilities. India has maintained its position on Russia's war in Ukraine and has consistently called for dialogue and diplomacy to end the conflict. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin said the ties between Russia and India were continuing to grow stronger and that Russia remains one of India's key strategic partners, especially in the defense and energy sectors.
3: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए। और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा एक्सलेंसी यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है उमंग से भर देती है हमें एंडलेस वॉर

0: बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
1: दो दिन हो गए हमें।
2: दो दिन?
0: आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
1: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
2: दिल्ली से,
0: तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
1: अभी हम लोग 20-22 लोग।
2: 20-22?
0: और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
1: एयर कार्गो में सारा सामान है।
0: एयर कार्गो
1: से? बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
0: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे। और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोग लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है, उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
3: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: The Public Works Department of the Government of Nepal has started a massive restoration work actually, first to ensure that the roads are made motorable, and then the other damaged structures would be taken care of, as in the houses and other structures which have been completely wiped up. Now, a very interesting fact about the Tushuli market, the Tushuli town, is that almost 400 to 500 Indian families were staying here. They were running the local businesses, right from the pan shops to the cloth shops to the kirana stores. They were all working here, and they're all Indian families settled here working in Tushuli. If I could just show you the choppers flying over here. So these are the choppers who are actually, I can show you both the two choppers over there. So these choppers are not only carrying relief material to the stranded area where the people are still stuck, but also carrying back those stuck people, those stranded people, and also dead bodies if found any. 700 to 800 people alone died from this Trishuli town only. This was one of the most devastated town and most affected town from this flash flood which had come to Nepal. But the good news is that the government here is now out on the streets trying to restore, trying to rehabilitate, and especially the trying to control the damage which was done here, especially the roads, so that the roads are motorable, and then the other amenities or other help, it would be easy for them to reach these kind of places. From Tishuli in Nepal, this is Prabhakar Kumar for NDTV.
1: Now, people from the far and wide are coming to help those affected by the floods in Nepal. A 20-member team from an organization called Hemkund Foundation has reached Navakot. My Ranveer, my colleague Ranveer, has sent us this ground report. Take a look.
2: विनाश के बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो कितना मुश्किल काम है, जरा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है हेमकुंड साहिब, चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
3: दो दिन हो गए हमें।
2: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
3: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
2: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
3: अभी हम लोग 20-22 लोग।
2: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
3: एयर कार्गो में सारा सामान है।
2: एयर कार्गो
3: से? बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
2: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले, तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
1: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
4: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.